सुप्रभात। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज पर और साथ ही FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आज दिन शुक्रवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 मई सन 2026। इस समय सवेरे की 5:57 हो रहे हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

माँ शब्द अपने आप में ही परिपूर्ण है, और फिर वो माँ जो सारे जगत की माँ है, जो बिन बोले सब जानती हैं और बिन मांगे सब देती हैं, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम।

ईश्वर सदैव हमारे साथ होते हैं, हमारे आसपास होते हैं। आवश्यकता होती है तो सिर्फ उन्हें सच्चे मन से पुकारने और महसूस करने की।

0: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
1: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडरपास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
0: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
0: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
1: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडरपास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
0: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
5: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
6: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
6: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
6: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
5: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं चिंतन बिंदु।
2: सुख कहते किसे हैं? साधारणतया संसारिक सुख। अर्थागमो नित्यम रोगिता च, अर्थ का आगम होता रहे, नित्य अरोगी बना रहे। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, सुंदर पत्नी हो, प्रिय बोलने वाली हो। वत्स्य पुत्र अर्थकरी च विद्या, आज्ञाकारी बेटा हो और अर्थकरी विद्या हो। ये छह प्रकार के सुख हैं। अब दुख छह नहीं है, दुख चार ही हैं। दुख का वर्णन महाभारत में कथा आती है कि जिस समय दुर्योधन के साथ उसके सारे भाई मारे गए तो उनकी माँ गांधारी अपने बालकों के शवों को लेकर के रो रही थी। अचानक भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि बुआ जी क्यों रो रही हैं, आपके बालक तो स्वयं ही अपने मरने का कारण बने। तो गांधारी ने कहा कि तुम मेरे नज़रों से दूर चले जाओ, तुमने मेरे पुत्रों को मरवाया, तुम न होते तो पांडव मेरे पुत्र को नहीं मार पाते। भगवान ने बहुत समझाया, गांधारी जी को समझ में नहीं आया, वो चले गए। अचानक गांधारी जी को भूख प्यास लगने लगी, गांधारी जी व्याकुल हो गई। गांधारी जी ने विचार किया, गांधारी जी ने सोचा क्या करें। दूर उनको दिखाई एक बेर का वृक्ष दिखाई पड़ा, दौड़ती वहाँ गई और जैसे उसे उन्होंने तोड़ना चाहा तो बेर का वृक्ष ऊपर उठने लगा। तो बार बार प्रयास किया, बार बार हाथ कूद कूद करके तोड़ने का प्रयास किया, जब नहीं टूटा तो जिस बालकों के शव को पकड़ के रो रही थी उन्हीं बालक के शवों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर रख करके और चरण रख के फल को तोड़ने लगी। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। प्रभु ने कहा अभी बुआ जी आप अपने पुत्रों के लिए रो रही थी और कह रही थी कि मेरे पुत्रों को आपके कारण मेरे पुत्र मारे गए, और उन्हीं पुत्रों के ऊपर अपना चरण रख के आप पैर रख करके और बेर का फल तोड़ रही हैं। तो गांधारी जी ने दुख का वर्णन किया है कि कृष्ण दुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है कि वासुदेव जरा कष्टम। पहला दुख वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में इंद्रिय शिथिल हो गया, कोई सुनता नहीं, दृष्टि भी कमज़ोर हो गई और सारी इंद्रियों से उस प्रकार से क्रियाएं नहीं हो रही हैं जैसा पहले होता था। तो उन्होंने कहा वासुदेव जरा कष्टम, पहला कष्ट है वृद्धावस्था, बुढ़ापा कष्ट का एक स्वरूप है। कष्टम निर्धन जीवनम, उससे बड़ा कष्ट निर्धन जीवन है, और निर्धन जीवन से भी बड़ा कष्ट है पुत्र शोकात महात कष्टम। किसी का जवान बेटा मर जाए तो उससे बड़ा कष्ट है पुत्र शोकात महात कष्टम। लेकिन कष्टात कष्टतरम क्षुधा, सबसे बड़ा कष्ट क्षुधा है। पेट के लिए आदमी कुछ भी करता है, जो नहीं करना चाहिए, जो वह चाहता नहीं है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप से अपने पेट के लिए अपने परिवार के लिए उसे वह भी करना पड़ता है जो वह न चाहते हुए भी उसको करना पड़ता है। तो इन चार प्रकार के कष्ट और छह प्रकार के सुखों में हम जीवन जी रहे हैं, और प्रायः जो चौथा कष्ट है वासुदेव जरा कष्टम, कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोकात महात कष्टम, कष्टात कष्टतरम क्षुधा, इसीलिए हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि इन क्षुधा तात्पर्य क्षुधा में उदित जो अग्नि है, किसी को भोजन कराना भी पुण्य इसीलिए माना गया क्योंकि वह एक ऐसा कष्ट है जो प्रत्यक्ष भले ही आपको दिखाई न दे रहा हो लेकिन अप्रत्यक्ष उस कष्ट को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो इन दुखों में चाहे इन सुखों में हमारा जीवन रचा बसा है कि जो हम सुख चाहते वह मिलता नहीं और दुख से हमें निवृत्ति मिलने वाला नहीं क्योंकि यह दुख का आलय है। तो इन सुख और दुख में, क्योंकि सुख स्वयं की इच्छा है और दुख स्वयं अपने आप मिलने वाला है, दुख हम चाहते नहीं फिर भी हमें प्राप्त होता है और सुख हम चाहते भी हैं तो भी हमें मिलता नहीं, इसका सीधा सा अर्थ यह है सुख का स्वरूप व्यवहारिक जीवन में भौतिकवाद नहीं है, अध्यात्म है, और दुख का स्वरूप तो सबको पता ही है, दुख से सब लोग गुजर रहे हैं, यह दुख और सुख का स्वरूप।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन बिंदु, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

मानस खान आप सुनेंगे इसी सभा में अब से कुछ ही देर में 6:40 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में हमारी आज की इसी सभा में 9:50 पर, दोपहर 12:55 पर और 8:15 पर आज के कलाकार होंगे गुलाम अली।

लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग में इसी सभा में 11:05 पर आज आप सुनेंगे राधेश्याम मणि त्रिपाठी के गाय लोकगीत। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा दोपहर 12:00।

महिलाओं के लिए उनका कार्यक्रम होगा नारी जगत, दोपहर 1:15 पर, और दोपहर 1:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर एस के तोमर से विनय कुमार की बातचीत, धान की नर्सरी हेतु खेत की तैयारी।

युवा श्रोताओं के लिए उनका कार्यक्रम होगा युवाणी शाम 5:05 पर। ग्राम जगत कार्यक्रम होगा शाम 5:35 पर। इसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर संतोष कुमार कुशवाहा से बातचीत, पित्ताशय की पथरी में कैंसर की संभावनाएं। किसान भाइयों के लिए उनका कार्यक्रम होगा खेतीबाड़ी शाम 6:10 पर। इसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर विनय कुमार मिश्र की वार्ता, गन्ना में लगने वाले कीट एवं उनका नियंत्रण, और डॉक्टर विनोद बहादुर सिंह से भेंट वार्ता सुनिएगा, आम की रंगीन प्रजातियों की बागवानी। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में शाम 6:45 पर आज के कलाकार होंगे श्री चंद्रभान और उनके साथी। देश हमारे कार्यक्रम में शाम 7:00 सुनिएगा श्री नंद जी नंदा का काव्य पाठ।

प्रादेशिक संगीत शाम 7:10 पर और रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्रीमती सुधा राजलक्ष्मी की वार्ता लोकगीतों में प्रकृति और पर्यावरण।

कोप भवन में बैठी रानी कैकई ने पति के कभी के दिए हुए दो वर मांगे हैं, एक भरत को राजतिलक और दूसरा राज्य और कुटुंब आदि की ओर से उदासीन विरक्त मुनियों की भांति राम का 14 वर्षों तक वन प्रवास। राजा दशरथ सहम गए हैं, सहसा कुछ कहते नहीं बना, मानो वन में बाज बटेर पर झपट पड़ा हो। कैकई ने राजा के मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष को नृशंस हथनी की तरह जड़ से उखाड़ फेंका है। धर्म की धूरी धारण करने वाले राजा दशरथ ने धैर्य धारण कर आंखें खोली तो प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई इस प्रकार दिखाई पड़ी जैसे म्यान से निकलकर नंगी तलवार खड़ी हो। राजा ने जी कड़ा करके अत्यंत नम्रता के साथ रानी को प्रिय लगने वाली वाणी में कहा, हे प्रिय, भरत और रामचंद्र तो मेरी दो आंखें हैं, मैं सवेरे ही दूत भेजकर भरत और शत्रुघ्न को बुलवा लूंगा और शुभ मुहूर्त निकलवाकर सब तैयारियां करके डंके की चोट भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा गहरा प्रेम है। मैं ही अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। मैं 100 बार राम की सौगंध खाकर कहता हूं, राम की माता ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे पूछे बिना राम को युवराज पद देने की तैयारी कर ली थी। तुम तो स्वयं भी राम पर स्नेह रखती हो। हे प्रिय, अब हंसी और क्रोध छोड़कर उचित अनुचित का विचार करके दूसरा वर मांग लो, जिससे मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं।

0: अभी आप सुन रहे थे मानस गान। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार प्लास्टिक कागज सबका सही ढंग से निपटान स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल आबूधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata today. He is scheduled to attend a meeting with the newly elected BJP MLAs, during which the party's legislative leader will be selected. The new Chief Minister of the State and the Council of Ministers will be sworn in tomorrow on the birth anniversary of Kobi Guru Rabindranath Tagore. Meanwhile, preparations are underway for the swearing-in ceremony at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Necessary administrative meetings have been held and tight security arrangements have been put in place for the occasion. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, senior BJP leaders and chief ministers from other states are expected to attend the oath-taking ceremony. In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, political situation in the state talks have been held to reach the magic number 118 to prove majority. The DMK and the AIADMK had held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday. AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswamy has been elected as the leader of the legislative party meeting at Puducherry. The crucial meeting of the newly elected MLAs of VCK, CPI and CPIM is to take place today on the issue of lending support to the single largest party, TVK, even as the Governor Vishwanath Adlekar had demanded from them. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal chaired a meeting with the chairman of the Indian Chamber of Food and Agriculture, Dr. M.J. Khan. Sharing this information on a social media post, he said they discussed initiatives to further enhance the quality of life of our farmers, strengthen India's position in the global agriculture landscape, deepen collaboration with the African region, and share India's expertise in the sector. He added that they also deliberated on new pathways to enhance agricultural cooperation for long-term food security. Consumer Affairs, Food and Public Distribution Minister Prahlad Joshi has said government food grain stocks have reached over 604 lakh tons in the country, which is nearly three times higher than the mandatory buffer requirement. In a social media post, the minister said robust wheat and rice reserves are ensuring an uninterrupted supply for welfare schemes and the public distribution system across the country. Mr. Joshi said strong procurement, successful harvest and sustained support for farmers continue to reinforce India's commitment towards food security, farmer welfare and a resilient future. He highlighted that India's food security framework continues to grow stronger under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Russia has announced a ceasefire in its ongoing war with Ukraine beginning today till May 10th during celebrations marking the 81st anniversary of the Soviet victory in World War II. The announcement was made by the Russian Defense Ministry following a decision by President Vladimir Putin. Earlier, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said at a summit in Yerevan that Russia might avoid displaying military equipment during its May 9th Victory Day parade because of fears of possible drone attacks over Moscow's Red Square. In response, Russian officials warned that any Ukrainian attack on Moscow during the parade could trigger a large missile strike on central Kyiv. Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova also criticized Western countries over their stance on May 9 celebrations and accused them of distorting Soviet history. In IPL cricket, Lucknow Super Giants defeated Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using the DLS method in a rain-hit match at the Ikana Stadium in Lucknow last night. Chasing 213 runs for victory, Royal Challengers Bengaluru made 203 for 6 in 19 overs. Earlier put into bat, Lucknow Super Giants scored 209 for 3 in 19 overs. Multiple rain interruptions reduced the match to 19-over-a-side affair, setting Bengaluru a DLS target of 213. Mitchell March scored dazzling 111 of 56 for Lucknow, while Rajat Patidar contributed 61 of 31 for Bengaluru. Mitchell March was adjudged player of the match. Today, Delhi Capitals will take on Kolkata Knight Riders at the Arun Jaitley Stadium in Delhi at 7:30 p.m.

ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं देश गान।

अभी आप सुन रहे थे मिलीजुली आवाज़ों में देश गान। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप हमारे केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया जनगणना 2027 का शुभारंभ। प्रदेश भर में शुरू हुई स्वगणना प्रक्रिया, पहले दिन 1,00,000 से अधिक लोगों ने की स्वगणना। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 2,131 करोड़ रुपए की 325 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, बागवानी क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए गठित होगा कार्यबल। और रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने लगा रेल मंत्रालय, अगस्त माह में होगी प्रक्रिया की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में जनगणना 2027 का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रदेश भर में स्वगणना की भी शुरुआत हो गई। कल शाम 6 बजे तक प्रदेश में 1,00,000 से अधिक लोगों ने स्वगणना कर ली थी। जनगणना के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल जनसंख्या की गणना भर नहीं है, बल्कि समग्र समावेशी और सुनियोजित विकास का सशक्त आधार है।
3: प्रदेश में 21 मई तक होने वाली स्वगणना के माध्यम से नागरिक स्वयं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके उपरांत फील्ड कार्य के अंतर्गत जनगणना कार्मिक घर घर जाकर सूचीकरण का कार्य करेंगे। जनगणना के पहले चरण में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। इस बार जनगणना में जाति गणना को भी सम्मिलित किया गया है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
2: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल जनभवन में डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर स्वगणना प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने अपील की कि प्रदेशवासी जनगणना अधिकारियों द्वारा मांगी जाने वाली समस्त जानकारी पूर्ण, सही एवं तथ्यात्मक रूप से उपलब्ध कराएं।
4: जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश और प्रदेश की नीतियाँ, विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संसाधनों के वितरण और शहरी योजना जैसे अनेक क्षेत्रों में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपकी दी गई सही जानकारी न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास की दिशा तय करने में मदद करेगी।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 2131 करोड़ रुपए की लागत वाली 325 लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर व तकदीर दोनों बदली है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचा है।
5: प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के समग्र विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया है और बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बांटा है। वंचित को वरीयता मिली है, पिछड़ों को प्राथमिकता मिली है, हर वंचित के घर तक उसकी योजना पहुंचाने का कार्य किया है और उसका परिणाम आज हमारे सामने है।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आयुष विभाग, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के लिए चयनित 481 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जवाबदेही, तकनीक और पारदर्शिता के कारण यूपी देश में सबसे अधिक नियुक्तियां देने वाला राज्य बन चुका है।
6: पिछले 9 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने लगातार नियुक्ति पत्र वितरण के नए कीर्तिमान को स्थापित किया है। कोई सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया इतनी निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो पाएगी। प्रदेश में हम लोगों ने जो प्रक्रिया बनाई, अलग अलग आयोग बोर्ड को जवाबदेही के साथ तकनीक का उपयोग करते हुए किसी भी प्रकार के किसी भी उस नौजवान के साथ जो योग्य है उसके साथ अन्याय न होने पाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जब बाध्य किया, परिणाम है 9 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नियुक्ति पत्र के माध्यम से नियुक्ति पत्र उपलब्ध करवाए।
2: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून को पहली फ्लाइट बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगी। यह फ्लाइट लखनऊ से नोएडा एयरपोर्ट होकर बेंगलुरु जाएगी। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के CEO राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इसके लिए टिकट की बुकिंग कल दोपहर बाद से शुरू हो गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निर्यात बढ़ाने के लिए बागवानी क्षेत्र के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ काम करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ाना आवश्यक है।
7: किसानों ने मांग की कि सेल्फ लाइफ बढ़े तो हम भेज पाएंगे, नहीं तो हमारा खराब ही हो जाता है। तो एक, हम सेल्फ लाइफ बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कई फलों की सेल्फ लाइफ बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है और उस पर और काम चल रहा है, तो हम सेल्फ लाइफ बढ़ाएंगे। विदेशों में रिजेक्शन ना हो इसलिए क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम, क्वालिटी इम्प्रूव का एक उदाहरण यही मिलेगा आपको बागवानी संस्थान में, जब फलों की बैगिंग की गई है।
2: केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत सरकार स्वच्छ पौध केंद्र स्थापित कर रही है। उन्होंने बताया कि उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसे 9 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक केंद्र उत्तर प्रदेश में भी खोला जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में कल समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
8: भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने के अनुमान अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में यमुना नदी में नाव पलटने की घटना में कल 5 शव बरामद हुए। यह हादसा 6 मई की रात में उस समय हुआ जब एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए नाविक सहित 10 लोग नाव पलटने के कारण नदी में गिर गए थे। हादसे के शिकार 4 लोग सुरक्षित बच गए, जबकि अंतिम समाचार मिलने तक एक की तलाश जारी थी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल हुए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की टीम को 9 रनों से हरा दिया। लखनऊ की टीम ने बारिश के कारण बाधित मैच में 19 ओवर में 3 विकेट पर 209 रन बनाए, लेकिन डकवर्थ लुइस नियम के तहत आरसीबी को 19 ओवर में 213 रन का लक्ष्य मिला। आरसीबी की टीम 6 विकेट पर 203 रन ही बना सकी। प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। गोरखपुर और आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर

कल बारिश के साथ ओले भी पड़े। कई जिलों में आज भी सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया जनगणना 2027 का शुभारंभ। प्रदेश भर में शुरू हुई स्वगणना प्रक्रिया, पहले दिन 1 लाख से अधिक लोगों ने की स्वगणना। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 2,131 करोड़ रुपए की 325 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, बागवानी क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए गठित होगा कार्यबल। और रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलेगा रेल मंत्रालय, अगस्त माह में होगी प्रक्रिया की शुरुआत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी।

किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म तपस्या में। गीतकार थे एमजी हशमत और संगीत दिया था रविंद्र जैन ने। अगला गीत आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म हनीमून से। गीतकार योगेश हैं और संगीतकार हैं उषा खन्ना।

0: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
1: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
0: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
1: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

किशोर कुमार की आवाज़ थी फिल्म किनारा में। गीतकार गुलजार थी और संगीतिया था आर डी बर्मन ने। अगला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है वो कौन थी। गीत राजा मेहदी अली खान के हैं और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

0: किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म महबूबा में। गीतकार थे गुलजार और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। इसके साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम पूर्वा सुहानी अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली से सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसी के सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
1: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वित्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
3: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर एम जे खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3-सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
0: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा, टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है, पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है, इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे, लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ये बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है, तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है, कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
3: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। बीजेपी सेंट्रल ऑब्जर्वर फॉर वेस्ट बंगाल अमित शाह टू मीट न्यूली इलेक्टेड पार्टी एमएलएस इन कोलकाता टू इलेक्ट लेजिस्लेटिव लीडर टुडे। Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam Tho Lam emphasizes India-Vietnam role in global supply chain at Business Forum in Mumbai. Commerce Minister Piyush Goyal reviews initiatives to strengthen India's position in global agriculture landscape. Saudi Arabia suspends US military access to its bases and airspace. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants beat Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method at Ikana Stadium. BJP Central Observer for

0: वियतनाम के सदर और कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तो लैम कल रात श्रीलंका के दो रोजा सरकारी दौरे पर वहां पहुंचे हैं, जिसका मकसद बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करना और तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देना है। सदर तो लैम भारत का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद मुंबई से परवाज के जरिए बंदर नाइक के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे। उनके हमराह 209 अरकान पर मुश्तमिल एक वफ्द भी है। सदर तो लैम श्रीलंका का दौरा सदर अनुरा कुमारा दिसा नाइके की दावत पर कर रहे हैं और ये दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 55 बरस मुकम्मल होने के मौके पर हो रहा है। वियतनाम के सदर श्रीलंका की क़यादत के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे, पार्लियामेंट से खिताब करेंगे और कोलम्बो में श्रीलंका वियतनाम तिजारत सरमायाकारी और सियाहत से मुतालिक फोरम में शिरकत करेंगे। भारत और वियतनाम ने उभरती हुई टेक्नोलॉजी इख्तिरा तहकीक और स्टार्टअप इको निज़ाम में तावुन व इश्तराक को गहरा करने से मुतालिक मुज़ाकरात किए हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में वियतनाम के अपने हम मनसब डॉक्टर वू हाई क्वान के साथ दो तरफा मुज़ाकरात किए। बातचीत के दौरान फरीकैन ने मसनूई जहानत, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, इख्तराई इको निज़ाम और टेक्नोलॉजी की मुंतकली से मुतालिक पहल कदमियों में तावुन व इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में तहकीकी इदारों और इख्तराई मराकज से मुतालिक तावुन समेत दोनों ममालिक के दरमियान जारी तालीमी और इदारा जाती इश्तराक का भी जायजा लिया गया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने खुराक और ज़राअत की भारतीय चैम्बर के चेयरपर्सन डॉक्टर एम जे खान के साथ एक मीटिंग की सदारत की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में इन मालूमात को शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे किसानों के मेयारे ज़िंदगी को बेहतर बनाने, आलमी ज़राई मंजरनामे में भारत की पोजीशन को मुस्तहकम करने, अफ्रीकी खित्ते में ज़्यादा इश्तराक और इस शोबे में भारत की महारत को शेयर करने जैसे इकदामात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने तवील मुद्दती खुराक की यकीनी फराहमी के लिए ज़राई इश्तराक बढ़ाने के नए तौर तरीकों पर भी बातचीत की। जनाब गोयल ने डिलीवरी के को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सूरज सहारन के साथ एक मीटिंग की भी सदारत की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कंपनी के इख्तराई सफर और टेक्नोलॉजी पर मबनी कारोबारी मॉडल और इदारे की पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि कंपनी भारतीय लॉजिस्टिक्स को ज्यादा शफाफ, मुअस्सर और मुस्तकबिल के लिए तैयार बना रही है। खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कल अबू जहबी में भारत, फ्रांस और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान एक सह फरीकी मीटिंग में शिरकत की। इसमें भारत के लिए वजीर मुमलिकत और खसूसी एलची रीम अल हाशमी और फ्रांस की यूरोपी और खारिजी उमूर की वजारत में सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ब्रेन्स शामिल थे। वजारत खारिजा ने कहा है कि तीनों ममालिक ने अपनी शराकत दारी मुस्तहकम करने और आइंदा के लाइहा अमल के लिए काम करने से इत्तेफाक किया है। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रिसाई को मुअत्तल कर दिया है। इसकी वजह से सदर डोनाल्ड ट्रंप को आबनाए हुरमुज से बहरी जहाजों को बाहिफाजत निकालने के अपने मंसूबे को बीच में ही तर्क करना पड़ा है। अमरीका के दो अहदेदारान ने इस बात की तस्दीक की है। सऊदी अरब का ये कदम खलीज के खित्ते से मुतालिक अमरीका की हिकमत अमली के लिए एक बड़ा धचका माना जा रहा है, क्योंकि अमरीका के एक कलीदी इलाकाई इत्तेहादी ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के शुरू होने से पहले ही इस कार्रवाई में रुकावट डाल दी है। उधर सदर ट्रंप ने अपनी तवज्जो सिफारतकारी की जानिब मरकूज कर दी है। मजीद तफसील हमारे नामानिकार से।
1: ईरान जंग के खात्मे के लिए अब 14 निकात पर मुश्तमिल अमरीका की तजवीज का जायजा ले रहा है। उधर ईरान के वजीर खारजा अब्बास राखची ने मुजाकरात और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर दिया है। मुजवजा फ्रेमवर्क में लड़ाई रोकने और हतमी मुजाकरात के लिए 30 दिन की मुद्दत की बात कही गई है, जबकि ईरान के एटमी प्रोग्राम समेत बुनियादी मामलात पर बाद में बातचीत की जाएगी। सिफारती मंजरनामा अब भी गैर वाजे है, क्योंकि ईरान ने किसी भी तरह की शराइत कबूल करने की तस्दीक नहीं की है और ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने भी इस बारे में कुछ मीडिया इत्तलात को फर्जी करार देकर इन्हें मुस्तरद कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: रूस ने यूक्रेन के

0: साथ लड़ाई में आज से जंग बंदी का ऐलान किया है, जो दूसरी आलमी जंग में साबिका सोवियत यूनियन की फतह के 81 साल पूरे होने के जश्न के दौरान 10 मई तक जारी रहेगी। सदर व्लादिमीर पुतिन के फैसले के तनाजुर में रूस की वजारत दिफा ने ये ऐलान किया है। इससे कबल यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने येरेवन में एक सरबराह मीटिंग में ये कहा था कि हो सकता है कि रूस मॉस्को के रेड स्क्वायर पर मुमकिन ड्रोन हमलों के अंदेशे से 9 मई की यौम फतह परेड के दौरान फौजी साजो सामान की नुमाइश करने से गुरेज करे। अमरीका की तजारती उमूर से मुतालिक एक वफाकी अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए 10% आलमी महसूलात गैर कानूनी हैं। न्यूयॉर्क में बैनुल अक्वामी तजारत से मुतालिक अदालत के 3 जजों के पैनल ने यह फैसला सुनाया कि सदर ट्रंप ने तजारत से मुतालिक कानून के तहत सदर को दिए गए कांग्रेस के इख्तियारात से तजावुज़ करके इकदाम किए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने केरलम, माहे, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, मशरकी राजस्थान, साहिली कर्नाटक और रायलसीमा में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। IPL क्रिकेट में कल रात लखनऊ के ईकाना स्टेडियम में बारिश से मुतासिरा मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने DLS तरीक़ाकार के तहत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स को जीत के लिए 213 रन का निशाना मिला था और उसने 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाए। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी अखबारों ने मगरबी बंगाल असेंबली तहलील होने से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की इस हवाले से सुर्खी है, ममता बनर्जी हुकूमत का 15 साल दौर खत्म, गवर्नर RN रवि ने आईनी अख्तियारात इस्तेमाल किए। बिहार काबीना में तौसी से मुतालिक खबर भी सभी अखबारों में नुमाया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, सम्राट काबीना की तौसी, 32 वज़रा को गवर्नर ने ओहदे का हलफ दिलाया। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल मुकम्मल होने की खबर को भी सभी अखबारों ने अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि ऑपरेशन सिंदूर दहशत गर्दी के खिलाफ भारत का सख्त रद्द अमल और आवाम की यकजहती की अलामत।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मगरबी बंगाल के लिए BJP के मरकजी मुशाहिद अमित शाह कोलकाता में नए मुंतखब पार्टी अरकानी असेंबली के साथ मीटिंग करेंगे ताकि कानून साज पार्टी के लीडर का इंतखाब किया जा सके। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के मामले पर तातुल बरकरार है। VCK, CPI और CPIM के अरकानी असेंबली हिमायत देने या न देने के मामले पर आज मीटिंग करेंगे। वियतनाम के सदर तोलैम ने मुंबई में एक कारोबारी फोरम के दौरान आलमी सप्लाई निज़ाम में भारत वियतनाम रोल पर जोर दिया है। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रिसाई को मुअत्तल कर दिया है। और IPL क्रिकेट में ईकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने DLS साबते के तहत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार सानू को फिल्म तड़ी पार में। गीतकार समीर थे और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। अगले गीत आइए सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की ही आवाज़ में फिल्म आंदोलन से। गीत समीर के हैं और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details log on to www.ddindia.com।

कुमार सानू को भी आप सुन रहे थे फिल्म बरसात में। गीत अनवर सागर की थी और संगीतकार थे नदीम श्रवण। अगला गीत आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो की आवाज में। फिल्म का नाम है ढाई अक्षर प्रेम के। गीतकार समीर हैं और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

इस गीत के बाद आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं जतिन ललित।

इसके साथ ही आज का फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम हम लखनऊ से रिले कर रहे हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काशी दौरे के दौरान 6332.08 करोड़ रुपए की 163 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने 2464.46 करोड़ रुपए की लागत से मालवीय पुल के पास बनने वाले रेलवे रोड ब्रिज सिग्नेचर ब्रिज की आधारशिला रखी। इसके अलावा 1582.99 करोड़ रुपए की सीवरेज व जलापूर्ति योजनाएं तथा 429.36 करोड़ रुपए के कवि चौरा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल परियोजना का भी शिलान्यास किया। लोकार्पित प्रमुख परियोजनाओं में 308.09 करोड़ का एसटीपी, 144.43 करोड़ का कजाकपुरा आरओबी और सारनाथ स्थित तिब्बती संस्थान में सोवा रिंगपा मेडिकल कॉलेज शामिल है। प्रधानमंत्री का यह दौरा काशी के समग्र विकास, आधारभूत संरचना सुदृढ़ीकरण और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर सारनाथ में आयोजित भव्य बौद्ध महोत्सव श्रद्धा, अध्यात्म और संस्कृति का अद्भुत संगम बनकर उभरा। गौतम बुद्ध की 2570वीं जयंती के उपलक्ष्य में हुए इस आयोजन में देश विदेश से आए 1,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बुद्ध के पवित्र अस्थि धातुओं के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया। महोत्सव का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया तथा इंडो श्रीलंका जम्बू द्वीप बुद्ध विहार सारनाथ के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। मूलगन कुटी विहार में पवित्र अवशेषों के दर्शन के साथ श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किया। इस अवसर पर विश्व शांति के लिए तथागत बुद्ध विषय पर निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक बच्चों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया, वहीं सभी को प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम के दौरान धम्म देशना, विपस्सना और विचार गोष्ठियों का आयोजन भी हुआ, जिसमें वक्ताओं ने बुद्ध के उपदेशों को जीवन में अपनाने पर बल दिया। श्रद्धालुओं के लिए पूरे दिन भोजन की व्यवस्था की गई, जिसमें सेवा और करुणा का संदेश भी प्रसारित हुआ। इस अवसर पर महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव सुमितानंद थेरो ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाओं लुम्बिनी में जन्म, बोधगया में ज्ञान प्राप्ति और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण से जुड़ा पावन दिवस है।
1: बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया तरफ से सारनाथ में हर साल में हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मना रहा है। भगवान बुद्ध का पवित्र अस्थि ये मूलगंधकुटी महाविहार में रखा है, हम लोग को भगवान बुद्ध का अस्थि दर्शन कर रहा है।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस की पासिंग आउट परेड वाराणसी के पुलिस लाइन मैदान में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से परेड को संबोधित किया, जिसका सजीव प्रसारण सभी प्रशिक्षण केंद्रों पर किया गया। वाराणसी मंडल के विभिन्न भर्ती प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित इस पासिंग आउट परेड में कुल 3070 प्रशिक्षु आर्ची अब उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान के रूप में सेवा के लिए तैयार हो गए हैं। वाराणसी, जौनपुर एवं गाजीपुर जनपदों के प्रशिक्षण केंद्रों सहित पीएसी 36वीं वाहिनी रामनगर एवं 34वीं वाहिनी भुल्लनपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके आरक्षियों ने परेड में भाग लिया। इसके बारे में विस्तृत रूप से वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि वाराणसी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में विशेष रूप से महिला आरक्षियों को प्रशिक्षण दिया गया।
2: 491 महिला आरक्षियों ने यहाँ पर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण अपना कंप्लीट किया है। दीक्षांत परेड 491 महिला आरक्षियों की यहाँ पर हुई है। इन महिला आरक्षियों की जो लगभग 9.5 महीने की यहाँ पर ट्रेनिंग हुई है, इन महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ, पूरी लगन के साथ सफलतापूर्वक इस ट्रेनिंग को पूरा किया है,
0: जिसमें से 491 महिला प्रशिक्षुओं ने भी परेड में सहभागिता की। परेड के उपरांत इन सभी महिला आरक्षियों को विभिन्न थानों में तैनाती के लिए तैयार किया गया है, जहाँ वे महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुदृढ़ीकरण एवं जन सेवा के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसके अतिरिक्त तो वाराणसी परिक्षेत्र के जौनपुर एवं गाजीपुर प्रशिक्षण केंद्रों से 1390 आरक्षियों ने भी परेड में भाग लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वाराणसी के चौका घाट स्थित गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल में प्रसिद्धि विद्यालयों के शिक्षा मित्रों के बढ़े हुए मानदेय की चेक वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गोरखपुर के गुरु गंभीर नाथ प्रेक्षागृह से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया, जिसे उपस्थित लोगों ने उत्साहपूर्वक देखा। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन समन्वय मंत्री अनिल राजभर, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, MLC धर्मेंद्र सिंह, विधायक सौरभ श्रीवास्तव एवं जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार द्वारा दीप प्रज्वलन और माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर श्रम मंत्री अनिल राजभर ने शिक्षा मित्रों और शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताते हुए कहा कि वे देश के भविष्य को संवारने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने मानदेय वृद्धि को शिक्षा मित्रों के मनोबल को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक निर्णय बताया।
3: वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजीपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्री राम राय का।
4: गाजीपुर के कासमाबाद तहसील स्थित कयामपुर छावनी गांव में मगई नदी पर लोगों ने श्रमदान कर पुल निर्मित कर दिया, जिसका लोकार्पण प्रयाग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर यादव ने किया। मगई नदी पर पुल न होने के कारण लगभग 15 से 20 गांव के ग्रामीणों को लंबी दूरी तय कर जिला मुख्यालय पहुंचना पड़ता था। इसके लिए ग्रामीणों ने स्वयं पहल की एवं आपस में चंदा इकट्ठा कर मगई नदी पर पुल निर्मित कर दिया। न्यायमूर्ति शेखर यादव ने कहा कि यह संकल्प शक्ति एवं अच्छी सोच का ही परिणाम है कि आज ग्रामीणों ने बिना किसी सरकारी सहायता के मगई नदी पर पुल बनाकर एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में गाजीपुर के भावरकोल ब्लॉक अंतर्गत पलिया गांव निवासी उमेश राय ने कोलकाता के चर्चित हावड़ा उत्तर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि पर उनके गांव पलिया सहित पूरे जनपद में जश्न का माहौल है। ग्रामीण एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ढोल नगाड़े बजाकर एक दूसरे को शुभकामना दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब गाजीपुर में भी दिखने लगा है। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता विवेक खन्ना ने पिछले दिनों एक पावर हाउस के 10 ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में विभागीय संलिप्तता को देखते हुए 3 अफसरों को और 2 कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीओ प्रमोद यादव, जेई राजीव गुप्ता, जेई नीरज खरवार को निलंबित कर दिया। वहीं 2 संविदा लाइन मैन बर्खास्त कर दिए गए। पिछले दिनों गाजीपुर में करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव में हुई संदिग्ध मौत के मामले में यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मृतका के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद एवं न्याय का भरोसा दिलाया। वहीं दूसरी ओर पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह तथा अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी कटरिया गांव पहुंचकर मृतका के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। पिछले दिनों गाजीपुर में हुई बरसात और आंधी तूफान के कारण जहां सब्जियों को नुकसान हुआ, वहीं तेज आंधी के कारण पेड़ गिरने से 3 व्यक्तियों की मौत भी हो गई। घटना के बाद जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला मृतकों के परिजनों के बीच पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिलाया। अपर जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार मृतकों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। 1 मई को गाजीपुर में मजदूर दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने श्रमिकों के साथ बैठक की और उन्होंने उनके बीच मजदूर दिवस मनाया। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में गाजीपुर में 780 श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया है तथा उन्हें 3.25 करोड़ रुपए भी प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अनुसार गाजीपुर में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक श्रमिक को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। पिछले दिनों गाजीपुर पुलिस ने जनपद में अपराध मुक्त वातावरण बनाने की उद्देश्य से पुलिस की 12 टीमों के द्वारा एक गैंग के 61 सदस्यों के ठिकाने पर छापेमारी की। इस क्रम में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने बताया कि गैंग के 24 सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है तथा गैंग के कुल 90 शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। पिछले दिनों गाजीपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 1 अप्रैल से शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने राजभर समाज के आजादी की लड़ाई में योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि गोरखपुर के चौरी चौरा कांड में 26 राजभर युवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज भी राजभर समाज महाराजा सुहेल देव के चलाए रास्ते पर ही चल रहा है एवं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में लगा हुआ है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी गाजीपुर पहुंचे एवं विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट के बीच भी भारतीय युवा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि आगामी 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर न्याय आपके द्वार नारे को चरितार्थ करते हुए यह लोक अदालत लगाई जा रही है। इसमें बैंकिंग तथा पारिवारिक वाद के मामले तथा अन्य विभिन्न मामलों का भी निपटारा होगा। इस लोक अदालत के माध्यम से वादकारी का समय, श्रम एवं पैसे की बचत होगी। उन्होंने गाजीपुर के लोगों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में भागकर अपने मामले को निपटाएं। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में गाजीपुर के 6 मेडिकल फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। इसी क्रम में पिछले दिनों 2 आरोपियों राहुल यादव एवं दयाराम सिंह ने न्यायालय में हाजिर हुए एवं उन्हें जेल भेज दिया गया। 1 आरोपी सर्वांश वर्मा की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है एवं अन्य 3 के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए कुर्की आदि के माध्यम से पुलिस लगातार गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
5: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। उर्दू कार्यक्रम हम लखनऊ से रिले कर रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान। मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब पेश है उर्दू कार्यक्रम। आज की पेशकश है आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से, जिसमें आज आप सुनेंगे मुशायरा। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
1: के लखनऊ मरकज से आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेज़बान शम्सुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाएं सामईन। एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में महफिल

0: बहुत खूब अतीक साहब
1: और शेर सुनने का
0: जी अता करें मधुर भाई
1: कि घूम फिर के वो मेरे पास चला आता
0: वाह घूम फिर कर वो मेरे पास चला आता है।

0: ये गजल के चंद शेर।
1: मैं सुकून दिल की तलाश में,
2: मैं सुकून दिल की तलाश में,
1: न

0: इस समर गया बहुत देखो बहुत खो गए भाई बहुत खो क्या गजल है
1: ना आखिर शेर भी ये भी खूबी तौर पे समा फरमा ले कि तेरी बेरुखी का है गम मुझे
0: तेरी बेरुखी का है गम मुझे
1: क्या कह

0: शर्मसार कलम, वाह वाह वाह वाह वाह। दौरे हाजिर में ये शेर बहुत ही खूबसूरत है आपका, है रेलिवेंट है ये शेर आपका।
1: शर्मसार कलम, और ये एक सच्चाई और
0: जी जी
1: कलम की मतलब। है हकीकत है, इनकलाब आए हैं जमाने में,
0: इनकलाब आए हैं जमाने में,
1: इनकलाब आए हैं जमाने में, यानी तलवार की है धार
0: कलम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूब,
1: यानी
0: तलवार की है धार कलम,
1: तलवार की है धार कलम। और ये भी शेर
0: जी, अता करें,
1: अहदे हाजिर की सिर्फ बात नहीं,
0: अहदे हाजिर की सिर्फ बात नहीं,
1: अहदे हाजिर की सिर्फ बात नहीं, हर सदी का है राजदार
0: कलम, हर सदी का है राजदार कलम। क्या खूब शेर है, बहुत खूब,
1: सदी का है
0: बहुत उम्दा,
1: राजदार कलम,
0: बहुत ही खूब।
1: और ये भी शेर
0: जी अता करें। आतिक भाई आप भी शामिल हो जाइए।
1: क्या कहें दोस्तों मगर सच है,
0: क्या कहें दोस्तों मगर सच ने,
1: क्या कहें दोस्तों मगर सच है, अब सियासत का है शिकार
0: बहुत ही खूब, अब सियासत का है शिकार,
1: सियासत का है शिकार कलम। और ये आखिरी शेर मक्ते से पहले
0: जी जी जी अता करें मोहतरम।
1: कोई तहरीर सच न बोल सकी,
0: कोई तहरीर सच न बोल सकी,
1: कोई तहरीर सच न बोल सकी, चीखते रह गए हजार,
0: चीखते रह गए हजार कलम, बहुत
1: चीखते रह गए हजार,
0: बहुत उम्दा है।
1: और ये मक्ता भी
0: जी,
1: दास्तां जुल्म की लिखो आमिर,
0: दास्तां जुल्म की लिखो आमिर।

0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
1: कर रहा है
0: बहुत उम्दा
1: इंतजार कलम,
0: बहुत अंदाज, क्या
1: था कभी
0: बहुत ही खूब
1: सच का ताजदार कलम, खो चुका मगर वकार कलम।
0: बहुत खूब आमिर मुख्तार साहब। सामिन, ये थे जनाब आमिर मुख्तार साहब, जिनके कलाम से आप हजरात लुत्फ अंदोज हो रहे थे। सामिन, आज की ये खूबसूरत महफिल अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। हम अपने तीनों शोरा कराम के शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी दावत पर लब्बैक कहा। ये खूबसूरत पेशकश थी मोहतरम जनाब आसिफ इकबाल साहब की। कैसा लगा हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम? अपने तासुरात हमें इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। अगर आप अपने पैगाम हमें व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, नोट कर लीजिए, 7991778157। एक बार फिर सुने, 7991778157। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान शम्सुल आरफीन को दें इजाज़त। आदाब।
2: अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम। आज की पेशकश थी आकाशवाणी लखनऊ के मरकज़ से।
3: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: शास्त्रीय संगीत नृत्य साहित्य नाट्य विधाएं धारावाहिक वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: सुगम संगीत में आ जाइए, सुनते हैं गुलाम अली की गाई गजलें।

0: इसके साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे गुलाम अली की गई गजलें। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप दिल्ली से सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन होगा। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नव निर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
1: वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज होनी है। वहीं केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर अपने निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष एमजे खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी बातचीत की गई। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। वे मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू हुई तथा कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन से होती हुई आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रॉयल सीमा में आज गरज के साथ बारिश तथा तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, आकाशवाणी 90 वर्ष पूरे कर रहा है। इस सफर में अनेकों बदलावों के साथ आपने रेडियो को स्वीकारा है और भरपूर प्यार दिया है।

दोस्तों, रेडियो ने इस लंबे सफ़र में सिर्फ आवाज़ ही नहीं, बल्कि भावनाओं, यादों और संस्कृति को भी संजोया है।

दोस्तों, एक दौर था जब रेडियो घर का सदस्य हुआ करता था। इसकी मधुर तरंगों ने हर दिल को जोड़ा। आइए इसी सुनहरे एहसास को आगे बढ़ाते हैं अगले गीत के साथ।

दोस्तों, रेडियो की सबसे खास बात ये रही कि बिना देखे सिर्फ सुनकर दिल में तस्वीर बन जाना और महसूस करना। पुराने दिनों की यही मिठास लिए अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो कभी अकेलेपन का साथी तो कभी खुशियों का जश्न। रेडियो हर एहसास का हिस्सा रहा है, कभी ज्ञान का भंडार तो कभी सूचनाओं का भंडार।

रेडियो की शुरुआत महज 30 वाट के ट्रांसमीटर से की गई थी, लेकिन आज आकाशवाणी की आवाज़ पूरे देश के कोने कोने में गूंज रही है।

दोस्तों, विभिन्न भाषाओं और बोलियों के बावजूद आकाशवाणी की आवाज़ एक है। ये केवल एक माध्यम नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धड़कन है, हर दिल की धड़कन है।

रेडियो आज के दौर में हर क्षेत्र में, जैसे कृषि, शिक्षा, मनोरंजन, युवाओं के कार्यक्रम, महिलाओं के कार्यक्रम, समाचार और इस तरह के अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से आप तक हर दिन पहुंचता है।

किसी भी सूचना की विश्वसनीयता परखने के लिए पहले रेडियो ही सुनते थे, यहाँ तक कि समय का मिलान भी बड़े विश्वास के साथ इसी रेडियो से करते थे।

दोस्तों, समय बदला, तकनीक बदली, लेकिन रेडियो की आत्मा आज भी वैसी ही है। इस नए दौर में भी वही अपनापन, वही दीवानापन।

इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज आपने जिन फिल्मों के गीत सुने वो फिल्में थीं खूबसूरत, मिशन कश्मीर, अलबेला, परदेस, सरफरोश, जब प्यार किसी से होता है, फिर तेरी कहानी याद आई, वेयर इज़ द पार्टी यार, बचना आए हसीनों और मिलन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन दर्ज किया है। निदेशालय ने बताया कि पीड़ितों द्वारा की गई आत्महत्या से संबंधित कई एफआईआर कंपनी के खिलाफ दर्ज है। निदेशालय ने कल कर्नाटक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में करीब 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं और कंपनी के 3 संस्थापकों को गिरफ्तार किया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबूधाबी में बैठक की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। कल खसरे के संक्रमण से 12 और बच्चों की मौत हो गई। 15 मार्च के बाद से बांग्लादेश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। देश में परीक्षण किट की कमी से ये संकट और गहरा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई को 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने मैराथन में हिस्सा लिया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन भी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री गौरव द्विवेदी ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि आकाशवाणी हमेशा से लोगों की दिल की धड़कन रहा है।
2: आकाशवाणी भारत की धड़कन था, है और रहे।
0: आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. मीडिया वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:05 हो चुके हैं। आइए आनंद लेते हैं लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग का। और आज के कलाकार हैं राधेश्याम मणि त्रिपाठी।
4: लकी के राधा।

अमीर मोहिया जब से तू गईला श्याम भैला नीर मोहिया बन पवन ढूढ़ली सुजनाड गारिया।

0: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
1: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
0: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
1: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
0: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: विद्यालय

majaria. Me dê alegria, amor.

जाई कहो अपने प्यारे देवारी से, प्यारे देवारी से हो।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: माई के जगावे मालिन फूटली।
2: लोक रंग के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं राधेश्याम मणि त्रिपाठी को।
1: माली

राहुल सानी करली स्नान मैया हियाहुल सानी राज राज कर माई सोरहो सिंगार

ब्रह्मा विष्णु कार्य नित्य तुहर पूजन देवगढ़ गावे मंगल

0: बेटीवाले भाईले बेगाना है।
1: अभी आप आनंद ले रहे थे लोकगीत के कार्यक्रम लोक रंग का, और आज के कलाकार थे राधेश्यामणि त्रिपाठी। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस समय दिन के 11:30 हो चुके हैं। आइए आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: हो के यूं मायूस यूं शाम की तरह ढलते रहिए, हो के मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए।
2: लंबा सफर।
1: नमस्कार, फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि के साथ मैं सौम्या दीक्षित आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस गीत के साथ।

नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
1: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
0: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: देश के कोने कोने तक

अभी आपने सुना फिल्म सरफरोश से ये गीत, और उसके पहले आपने सुना था जोली LLB 2 और पद्मावत फिल्म से गीत। और इस गीत के साथ ही समाप्त होती है हमारे आज की ये फिल्म संगीत कार्यक्रम गीतांजलि। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस समय दिन के 12 बजने को है। लिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
3: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
3: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
3: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
3: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं, यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
2: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
3: जी श्रोताओं, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है। और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
2: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
3: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
2: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
3: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
2: जी,
3: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
2: जी।
3: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
2: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
3: जी श्रोताओं, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
2: जी,
3: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है ये, यानी माउना केया
2: जी।
3: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
2: जी।
3: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
2: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है, जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
3: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें
2: जी।
3: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है, इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है
2: जी। समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग है जहाँ अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँच पाता है।
3: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहाँ समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुँचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहाँ पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
2: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहाँ कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
3: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
3: 8800-440-559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
3: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर।
2: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
3: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसी भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल भंगा विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांको की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवक शाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
4: रविंद्रनाथ
2: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।
1: सन 1877 के आसपास

उन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेह युक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: आमार सोनार बांगला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरोदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणी बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन

0: यानी हमारा शांति निकेतन।
1: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर
0: शांति। सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
2: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
0: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
2: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
3: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए, और ऐसा हुआ।

0: सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
1: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
2: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर
1: शांति। सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
3: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
1: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्यपुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
3: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
1: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
3: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
0: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूं। उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा,
3: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद। इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
1: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून, न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमरीका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग उमंग उमंग
2: उमंग। अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।

आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर हम सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। गाने सुहाने फिल्म संगीत के कार्यक्रम के साथ मैं सौम्या दीक्षित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ।

अभी आपने सुना परदेश फिल्म से गीत, और जब प्यार किसी से होता है इस फिल्म से गीत सुना। आइए अब सुनते हैं अगला गीत। अगला गीत आ रहा है उमराव जॉन फिल्म से, आशा भोसले की आवाज़ में। आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे इज्जत फिल्म से ये गीत, और इस गीत के साथ ही समाप्त होती है हमारे आज की फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस समय दिन के 12:55 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
2: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
1: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
2: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
1: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: उपभोक्ताओं तक पहुँचने
0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं गुलाम अली।

अभी आप सुगम संगीत में सुन रहे थे गुलाम अली को। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्स और FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस समय दिन के 1:10 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से लगाई खबरें।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में 2,131 करोड़ रुपए की लागत से 325 अवामी फलाही मंसूबों का इफ्तिताह और संगी बुनियाद रखा। इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत की पॉलिसियों ने मगरबी उत्तर प्रदेश के चेहरे और तकदीर दोनों को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कीमों का फायदा समाज के हर तबके तक पहुँचा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के समग्र विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया है और बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बांटा है। वंचित को वरीयता मिली है, पिछड़ों को प्राथमिकता मिली है, हर वंचित के घर तक उसकी योजना पहुंचाने का कार्य किया है और उसका परिणाम आज हमारे सामने है।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से मर्दमशुमारी 2027 का आगाज किया। इसके साथ ही रियासत भर में खुद मर्दमशुमारी भी शुरू हो गई। शाम 6 बजे तक कल रियासत में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी मर्दमशुमारी मुकम्मल की। मर्दमशुमारी के आगाज के मौके पर वजीर आला ने कहा कि ये महज आबादी की गिनती नहीं है बल्कि हमजहत जामे और मनसूबाबंद तरक्की की मजबूत बुनियाद है।
2: प्रदेश में 21 मई तक होने वाली स्वगणना के माध्यम से नागरिक स्वयं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके उपरांत फील्ड कार्य के अंतर्गत जनगणना कार्मिक घर घर जाकर सूचीकरण का कार्य करेंगे। जनगणना के पहले चरण में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी जो 22 जून तक चलेगी। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। इस बार जनगणना में जाति गणना को भी सम्मिलित किया गया है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कल जनभवन में डिजिटल तौर पर अपनी मालूमात दर्ज करके खुद गिनती के अमल में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने रियासत के शहरियों से अपील की कि वो मर्दमशुमारी के अहलकारों की तरफ से दरखास्त करदा मुकम्मल दुरुस्त और हकायक पर मबनी मालूमात फराहम करें।
3: जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश और प्रदेश की नीतियाँ, विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संस्थानों के वितरण और शहरी योजना जैसे अनेक क्षेत्रों में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपकी दी गई सही जानकारी न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास की दिशा तय करने में मदद करेगी।
0: वजारत रेलवे ने ऐलान किया है कि ट्रेनों को एडवांस पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में तब्दील करने का अमल अगस्त में शुरू हो जाएगा। कल नई दिल्ली में एक जायजा मीटिंग में रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने अफसरान को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि 40 साल पुराने रिजर्वेशन सिस्टम से नए निजाम में तब्दीली के दौरान मुसाफिरों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। रिजर्वेशन का निजाम 1986 में शुरू किया गया था और गुज़िश्ता 40 वर्षों में इसमें कई तब्दीलियां आई हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2024 के आदाद और शुमार से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जरायम की शरह में उत्तर प्रदेश मुल्क में 18वें नंबर पर था। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव कृष्णा ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में जदीद पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं और ज्यादा चौकस एंटी रोमियो स्क्वाड, हर थाने में खवातीन के लिए वक्फ करदा हेल्प डेस्क, कमजोर तबकात को तेज रफ्तार इंसाफ फराहम करने वाली फास्ट ट्रैक अदालतें और मुनज्जम जराइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश में कानून की हुक्मरानी कायम की है। हुकूमत ने रियासत भर में नस्ब तमाम स्मार्ट मीटरों के पोस्टपेड मोड में चलाने के अहकाम जारी किए। वजीर तवानाई एके शर्मा ने कहा कि तमाम स्मार्ट मीटर्स को फौरी असर से पोस्टपेड सिस्टम में तब्दील किया जा रहा है। अब सार्फिन के बिजली इस्तेमाल करने के बाद ही बिल वसूल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सार्फिन को बिल हर माह की 10 तारीख तक SMS और व्हाट्सएप के जरिए भेजे जाएंगे। वजीर तवानाई ने कहा कि स्मार्ट मीटर और बिजली के बिलों से मुतालिक शिकायत के तस्वीर के लिए 15 मई से 30 जून तक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सब डिविजनल ऑफिसर के दफ्तर में खसूस कैंप और इमदादी मराकज कायम किए जाएंगे। रियासत में सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर उसके मसावी ओहदों पर बराह रास्त भर्ती के लिए 2025 के तहरीरी इम्तिहान के नतायज जारी कर दिए गए हैं। इस भर्ती के अमल के लिए तकरीबन 15,75,760 उम्मीदवारों ने दरखास्त दी, जो कि 4,543 असामियों के लिए मुनक्किद की गई। इनमें से 12,333 उम्मीदवार अगले मरहले के लिए कामयाब करार पाए हैं। ये इम्तिहान 14 और 15 मार्च 2026 को मुनक्किद हुआ था। रिक्रूटमेंट बोर्ड के मुताबिक दस्तावेजात की तस्दीक और फिजिकल टेस्टिंग मई के तीसरे हफ्ते में की जाएगी। की वेबसाइट पर मुकम्मल तफसीलात दस्तयाब कराई गई हैं। आज 8 मई को रेडक्रॉस का आलमी दिन है। आलमी रेडक्रॉस का दिन हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद इंसानियत खिदमत और खैरात के जज्बे को फरोग देना है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाका की खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
4: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस समय दिन के 1:15 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत। आज के नारी जगत कार्यक्रम को लेकर आ रही हैं अनीता भट्ट।
5: जी बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगी और अपने कार्यों में व्यस्त भी होंगी, लेकिन अपना प्यारा कार्यक्रम नारी जगत में अनीता को सुनने के लिए समय तो निकाल ही ली होंगी बहनों। तो आइए बहनों, बात करते हैं आज यानी प्रत्येक 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य लोगों में उदारता, सहानुभूति और निस्वार्थ भावना को विकसित करना होता है। तो बहनों, आपदा या युद्ध के समय पीड़ितों की सहायता करने वाले स्वयंसेवकों के मानवीय कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जाता है आज के दिन। और इस दिन की शुरुआत 8 मई 1948 को की गई थी बहनों। आज के दिन ही हेनरी डुनेंट की जयंती को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है बहनों। उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए और पूरे विश्व में लोगों को मानवतावादी सेवक के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित भी किया बहनों। वर्तमान में 186 देशों में रेड क्रॉस सोसाइटी भी कार्य कर रही है और 1901 में मानव सेवा के कार्यों के लिए हेनरी ड्यूनेंट को शांति का नोबेल पुरस्कार भी इसके लिए मिला था। तो बहनों, आज रेड क्रॉस दिवस के दिन ब्लड बैंक का संचालन भी रेड क्रॉस एवं उनके सहयोगी संस्थाओं के द्वारा रक्तदान जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, जिससे थैलेसीमिया, कैंसर, एनीमिया जैसी अनेक जानलेवा बीमारियों से हजारों लोगों की जान भी बच जाती है इस ब्लड बैंक के द्वारा। और यह दिन हर एक विशेष थीम के साथ मनाया भी जाता है जो मानवता को जीवित रखने पर जोर देती है। तो बहनों, बातचीत तो होती ही रहेगी अपनी बहनों के साथ और हमारी कोशिश भी रहती है कि बहनों को अच्छी अच्छी जानकारी दें, लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

जी बहनों, गाना तो बहुत ही प्यारा था, आपको भी अच्छा लगा होगा। और बहनों देखिए, कोई भी समस्या बता करके नहीं आती है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो हर समस्याओं के लिए और आपदाओं के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और ये आपदा जो है, प्राकृतिक आपदाएं जो नियमित रूप से दुनिया के हर कोने में, जैसे तूफान, सुनामी, भूकंप, बाढ़ जैसी आग की समस्याएं जैसे तबाही बनकर आती रहती हैं, तो आपदा अचानक आती है और चारों तरफ हाहाकार भी मच जाता है। तो ऐसे में इंसान घबरा जाता है कि क्या करें। इससे सावधान रहने के लिए प्राकृतिक आपदा की स्थिति में शांत और एकाग्र भी रहना चाहिए और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। बहनों, तुरंत आपदा में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं और प्रभावित क्षेत्र से बाहर किसी व्यक्ति से संपर्क करके बताएं और सहायता के लिए भी उससे कहें। आपातकालीन समय में रेडियो, टेलीविज़न या अलर्ट सिस्टम से जुड़ करके लोगों को सहायता के लिए बुलाएं और घायल लोगों को तुरंत डॉक्टरी सेवा भी उपलब्ध करवाएं या नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्रों पर गाड़ियों से मरीजों को उपचार के लिए ले जाएं, प्राथमिक उपचार करवाएं। बहनों, और सर्वप्रथम तो आपदा कैसी है उसके आधार पर आपातकालीन सामग्री भी सुरक्षित रखें। बहनों, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत सामग्री, पीड़ितों को जल, भोजन पहुंचाने में भी मदद करना चाहिए। आपदा से प्रभावित लोगों जैसे बुजुर्ग और बच्चे हैं वो तो उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाएं और उन्हें भावनात्मक सुरक्षा दें। तो देखिए, समस्याएं तो हमेशा कभी भी अचानक आ जाती हैं, इसके लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए लोगों की सुरक्षा करने के लिए। लोगों को हर संभव प्राथमिक उपचार और या प्राथमिक मतलब सहायता देने के लिए। तो बहनों, चर्चा तो अभी और भी बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ मस्ती भी हो जाए और झूमते हुए आइए, गाते हैं रंबा हो।

आइए बहनों, सेहत के बारे में भी बातें करते हैं कुछ। अगर स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो अपने स्वास्थ्य की केयर भी जरूर करें। और बहनों, हेल्थ के बारे में, इस क्षेत्र में आप स्किल्स के माध्यम से बहुत आगे जा सकती हैं। भाई, स्वस्थ रहना तो सभी चाहते हैं, तो स्वास्थ्य सेवा में करियर आगे बढ़ाने के लिए सहानुभूति, प्रभावी संचार, टीमवर्क, समय का प्रबंधन और तकनीकी का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। बुनियादी रूप से चिकित्सा देखभाल में, जैसे कि वाइटल की जांच करना, घाव की ड्रेसिंग करना और दवाएं देने जैसी ज़रूरी चीज़ें सीखनी होती हैं। जैसे बहनों, बिल्कुल बिल्कुल बहनों, कौशल के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए ही। यह शिक्षा प्रशिक्षण द्वारा अनुभव से इसको सीखते हैं। और इसमें हार्ड स्किल्स जैसे तकनीकी ज्ञान में कोडिंग मशीन चलाना होता है, और एक सॉफ्ट स्किल्स होता है जो उसमें व्यक्तिगत गुण और संचार, टीम वर्क, समस्या, मरीजों की सुनना और समय का प्रबंधन करना होता है। और बहनों, हेल्थ के क्षेत्र में जैसे नर्सिंग की ट्रेनिंग भी करना एक बहुत अच्छा अवसर है। नर्सिंग देखभाल में घाव की ड्रेसिंग करना, ओस्टोमी देखभाल, अंतःशिरा चिकित्सा, दवा देना और रोगी के सामान्य स्वास्थ्य की निगरानी करना, ये सब स्वास्थ्य की देखभाल में शामिल रहता है। तो बहनों, यह स्किल्स हैं। आप इस क्षेत्र में अगर जाना चाहती हैं तो ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे स्किल क्षेत्र हैं जिसमें आप जुड़ करके, प्रशिक्षण ले करके इस क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं और अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं। तो जानकारी की बातें अभी और भी सुनते हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत, प्यारा सा।

जी जी हाँ बहनों, गर्मियों का मौसम काफ़ी गर्म और उमस से भरा भी होता है। और देखिए, गर्मी का मौसम तो चल ही रहा है और साथ ही ठंडा इसको रखने के लिए, तरोताज़ा बने रहने के लिए हर समय हम प्रयास भी करते रहते हैं। और ऊर्जा देने वाले पेय पदार्थों को भी अपनी प्यास बुझाने से लेकर स्वादिष्ट आइसक्रीम के कटोरे का आनंद

लेने तक हम बस गर्मी से बचने का उपाय करते रहते हैं हरदम। जी हाँ बहनों, गर्मी से राहत पाने और स्वस्थ रहने के लिए अपने आहार में बदलाव करने का भी समय आ गया है। तो आइए बहनों, अपने खान पान में क्या सुधार करें कि हम गर्मी में स्वस्थ और हेल्दी बने रहें। बहनों, गर्मियों के महीने में पसीने के जरिए हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा पानी निकल जाता है, इसलिए डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पूरे दिन खूब पानी पिए। नारियल पानी, छाछ और पुदीने के शरबत, खीरा का शरबत जरूर लेते रहें। और बहनों, अपने खान पान में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल करें जिसमें कि ठंडक देने वाले गुड़ हों। अपने आहार में खीरा, तरबूज, दही, लस्सी को शामिल करें। इससे पानी भरपूर मिलता है और ये शरीर को ठंडा भी रखता है, तरोताज़ा भी रखता है। और इस मौसम में भोजन में हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन अपनाएं। हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज और ताज़ी सब्जियों के साथ साथ सलाद अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें। वसायुक्त तो भारी मसालेदार भोजन से दूर रहें, क्योंकि देखिए इस समय शादियों का भी मौसम चल रहा है, तो जहाँ भी जाओ वहाँ गरिष्ठ भोजन मिलता है, काफ़ी मसालेदार मिलता है। तो उससे भी थोड़ा बचने का प्रयास करें कि जब भी शादियों में जाएं तो हल्का भोजन करें। और देखिए गर्मियों में भाई चाय तो पीना ही है, तो चाय की तासीर गर्म भी होती है, तो इस समय जो है आप हर्बल टी लें, नींबू की चाय यूज करें, तो ये दिमाग भी शांत रहेगा और हल्का लाइट ये चाय होती है तो आप ये अच्छा रहेगा। और अगर दूध की चाय भाई पीना ही पीना है तो कुछ कम मात्रा में लें। और देखिए जूस के शरबत, बेल का शरबत भी पिएं, पानी तो भरपूर मात्रा में बहनों पिएं। और कुछ ऐसे फल भी अपने शामिल करें जैसे तरबूज, स्ट्रॉबेरी, खरबूजा और संतरा की प्लेट में रखें। ये फल न केवल आपको ऊर्जावान रखेंगे बल्कि ज़रूरी विटामिन बी और मिनरल्स भी इसको देते हैं। तो बहनों, इस समय गर्मियों के मौसम में आप अच्छी चीज़ें और अच्छे स्वस्थ दिनचर्या के साथ अपने आप को ढालें तो बहुत ही स्वस्थ रहेंगी और अच्छा रहेंगे और तरोताज़ा भी रहेंगी। तो आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

बहनों, ये मस्ती भरा गाना सुन करके तो आपको बहुत ही मजा आया होगा, और हमारा नारी जगत प्रोग्राम कैसा लगता है आपको जरूर बताएं। अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
2: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
1: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग।

0: और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
2: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
1: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार। विज्ञापनों के

0: बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details, log on to www.ddindia.com।
5: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस समय दिन के 1:50 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती किसानी। भेंटवार्ता लेकर आ रहे धान की नर्सरी हेतु खेत की तैयारी, ये विषय है और इस पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर एस के तोमर और आपसे बातचीत कर रहे हैं विनय कुमार।
6: खरीफ वाली फसलों में धान प्रमुख फसल है और अपने पूर्वांचल में सबसे ज्यादा रकबा में इसकी खेती की जाती है। ढेर सारे किसान भाई ऐसे हैं जो नर्सरी तो डालते हैं लेकिन उनके मन मुताबिक पौध नहीं तैयार हो पाते हैं। कभी घना हो जाएगा, कभी दूर हो जाएगा, कभी कभी इतना खरपतवार उग जाएंगे कि नर्सरी से पौध निकालना मुश्किल हो जाता है। इन सारी समस्याओं से संबंधित जानकारी देने के लिए आज हम से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं डॉक्टर एस के तोमर जी। आप हैं कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार जनपद गोरखपुर के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक एवं प्रभारी अधिकारी। आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, धान की उचित नर्सरी बनाने की विधि क्या है और उसकी तैयारी कैसे करना चाहिए?
7: धान की जो नर्सरी है, जितनी अच्छी आप नर्सरी करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी फसल होगी। और धान की अच्छी नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले जहां पर आप नर्सरी डालनी है उस क्षेत्र का चुनाव आपका अच्छा होना चाहिए। वो क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जहां पर बहुत पानी न लगता हो, जहां पर आपके पास सिंचाई का साधन भी अवश्य होना चाहिए, खेत की मिट्टी भी भुरभुरी और दोमट मिट्टी हो तो सबसे अच्छी है, और उसको खरपतवार रहित करके अच्छी तरह जुताई करके आपको उस क्षेत्र को तैयार कर लेना है। नर्सरी डालने का जो स्थान है, अगर संभव है किसान भाई, 4-6 इंच उठी हुई नर्सरी बेड बना करके आप उस पे नर्सरी डालें और उसमें बेड की जो जगह है उसमें गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए।
6: जो नर्सरी बनावल जाए

0: ओकरी
1: जी
0: पहले खेत का तैयारी कैसे कैल जा कि ओमे खर पतवार और जीवाणु यही तरह से कीड़ा मकोड़ा न लगे पावे।

0: के स्पोर्ट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। दूसरा, जो बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, नर्सरी डालने के स्थान को सोलर सोलराइजेशन भी करते हैं, जिसे काली जो पॉलिथीन सीट आती है उससे ढक दे रहे हैं, और करीब करीब 45 दिन का ये प्रोसेस होता है, उसमें नमी करके और उसको आप ढक देंगे। ढकने के बाद 45 दिन तक उसको ढके रहने से, जो पॉलिथीन सीट से, तो इससे सूरज की गर्मी उस पॉलिथीन सीट के अंदर जा करके मिट्टी में पड़े हुए सभी हानिकारक जो जीवाणु हैं उनको नष्ट कर देती है, और साथ ही जो खरपतवार जमा होते हैं वो खरपतवार भी जम करके वहीं नष्ट हो जाते हैं पॉलिथीन सीट के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से। तो इस तरह से ये रोग रहित और खरपतवार रहित आपकी जमीन हो जाती है। लेकिन सामान्य तौर पर हमारे किसान भाई सब नहीं कर पाते, उनके लिए बेहतर यही है कि आप गहरी जुताई करके उसको 2-3 बार, एक बार आप गहरी जुताई कर दें, 2-3 बार उसमें जो है कल्टीवेटर चला करके और महीन करके छोड़ दें, तो उससे खरपतवारों का जमाव जो है काफी हद तक रुक जाता है और जो हमारे हानिकारक जीवाणु वो भी नष्ट हो जाते
1: माटी के अंदर जौन कीड़ा मकोड़ा पावल जाला का
0: जी।
1: ओकर भी उपचार यही समय कर लेवे के चाहिए।
0: नहीं, अगर आपके खेत में कुछ इस तरह की विशेष दिक्कत है, जब आप गर्मी में छोड़ देते हैं खुला, तो तब तो कोई उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें है, तो उसके लिए तो उपचार करने के लिए है कि आप जब उसमें पानी भरेंगे, उसमें उस समय आप ज्यादातर दीमक का ही, या जो आपका रूट बोरर है उनकी समस्याएं आती हैं, और तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है, तो उसके लिए क्लोरोपायरीफास का आप इस्तेमाल उस समय कर सकते हैं।
1: कोनो भी प्रजातियों के, चाहे मोट धान वाली या पातर धान वाली, ओकर बेहन कितना कितना दूरी पर डाले के चाही, अकार नर्सरी डालत समय भी खाद का प्रयोग खेत में करे के चाही या सीधे नर्सरी डाल देवे के चाही।
0: देखिए, जो लाइन की बात आपने किया है, जनरली हमारे जो किसान भाई हैं वो नर्सरी छिटकवा ही डालते हैं,
1: हाँ
0: मेंटेन लाइन से लाइन की दूरी में वो मेंटेन नहीं कर पाते। फिर भी अगर आप किसान भाई करते हैं, तो 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन में भी किसान भाई जो है धान की बेरन डाल सकते हैं। साथ ही आपने दूसरा प्रश्न किया है कि खाद की मात्रा, तो किसान भाई को चाहिए कि जब भी आप नर्सरी डालते हैं, तो अगर गोबर की सड़ी खाद का उसमें प्रयोग करते हैं पर्याप्त मात्रा में, तो रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम मात्रा में करके भी काम चलाया जा सकता है, और इसके लिए किसान भाई जो है 50 किलोग्राम नत्रजन और 25 किलोग्राम डीएपी, 25 किलोग्राम पोटाश का इस्तेमाल प्रति हेक्टेयर की दर से जो नर्सरी तैयार करते हैं उसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा जब आपकी नर्सरी का जमाव हो जाता है, उसके बाद उसमें कुछ क्षेत्रों में जहां पर हल्की मिट्टी है या रेतली मिट्टी है या बलुई मिट्टी जिसको हम कहते हैं, वहां पर अक्सर देखा जा रहा है कि आयरन की कमी होती है, यानी कि लोहे लोह तत्व की कमी होती है, तो उसके लिए फेरस सल्फेट का छिड़काव उसके बाद करने की उसमें जरूरत होती है। आवश्यकता अनुसार हम जो है उसमें पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं।
1: नर्सरी में जो कीड़ा लगे या बीमारी लगे या जैसे आप बतौली हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का कमी, तो ओकरे बचाव खातिर भी का कोनो सावधानी बरते के पड़ी?
0: जैसे मैंने बताया कि कीड़े बीमारी, तो कोई नर्सरी अगर आपने खेत को अच्छी तरह तैयार करके डाला है और बीज को शोधित करके आपने डाला है, तो नर्सरी में सामान्यतः कोई कीड़ा और बीमारी का प्रकोप दिखाई नहीं देता है। हाँ, ये फेरस सल्फेट उन मिट्टियों में जहां पर बलुई मिट्टी है या हल्की मिट्टी है उनमें दिखाई देता है, तो उसके लिए जो है फेरस सल्फेट का हम किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं और अब उसे जो है बचाव हो जाता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर अच्छी सी बरसात भी हो जाती है उस समय, तो उससे भी फेरस सल्फेट की जो है ये लक्षण दूर हो जाते हैं।
1: डॉक्टर साहब, बहुत लोग बाना जमुना क्षेत्र में जिंक की कमी से जो रोग होला धान का खैरा रोग,
0: जी
1: तो क्या नर्सरी में अगर जिंक सल्फेट का छिड़काव कर जा तो उनके फसल के बचावल जा सकेला रोपाई कइला के बाद, या रोपे वाला खेत में भी डालल जरूरी होला?
0: देखिए, जिंक सल्फेट जैसे ही अमूमन धारणा बन गई है किसान भाइयों की, हर फसल में जिंक सल्फेट डालना है, जिंक सल्फेट अल्टरनेट पर डालना, यानी कि एक

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मानित करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
4: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
5: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
4: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।

0: समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जो इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं, इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट

साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और करैकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस समय दिन के 2:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए नेपाली कार्यक्रम हमारे दिल्ली के
1: विक्रम ताउनुस प्रथम सुनौ प्रज्ञा श्री विश्वकर्मा कुशर्मा यो आधुनिक गीत।

0: हुनुहुनेछ। देशका प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादले 11 मईमा 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मन्दिरको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीले आज एक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित एक लेखमा यो जानकारी साझा गर्नुभएको छ। उहाँले केही महिनाभित्र सोमनाथ मन्दिरसित महत्वपूर्ण आयोजनमा सामेल हुनु उहाँको लागि सौभाग्यको कुरा हो भन्नुभयो। यस वर्षको शुरूमा प्रधानमन्त्रीले मन्दिरमा भएको पहिलो आक्रमणको 1000 वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा सोमनाथ स्वाभिमान पर्वमा भाग लिनुभएको थियो।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: रक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन डीआरडीओ र भारतीय वायुसेनाले हिजो ओडिसाको तटमा सामरिक उन्नत रेन्ज संवर्धन तारा हतियारको पहिलो परीक्षण उडान सफलतापूर्वक सञ्चालित गरेका छन्। रक्षा मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, मड्युल रेन्ज विस्तार किट तारा देशको पहिलो स्वदेशी ग्लाइड हतियार प्रणाली हो। यसले अनिर्देशित हतियारलाई सटीक निर्देशित हतियारमा रूपान्तरण गर्दछ।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले तारा हतियारको पहिलो परीक्षण उडानका लागि डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी र उद्योगलाई बधाई दिनुभएको छ। उहाँले यसलाई भारतको स्वदेशी रक्षा क्षमतालाई अगाडि बढाउनमा महत्वपूर्ण विकास बताउनुभयो। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मन्त्री के राममोहन नायडूले भारत विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढ्दो उड्डयन बजारबाट अब विमान पट्टामा दिने र वित्तीय सहायताको मामिलामा एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन्दै गएको बताउनु भएको छ। गुजरातको गान्धीनगर स्थित गिफ्ट सिटीमा भारत विमान लिजिङ र वित्तपोषणको दोस्रो चरणको कार्यक्रममा मुख्य भाषण दिँदै श्री नायडूले यो कुरा बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भारत तेस्रो ठूलो घरेलु उड्डयन बजारको रूपमा उदित भएको छ। वर्ष 2026 घरेलु यात्रीहरूको संख्या 19 करोड 10 लाख पुगेको छ।
3: India has emerged not merely as one of the world's fastest growing economies, but also as a nation that the world looks to for inspiration, for partnership, and more importantly, for leadership. India's aviation sector is not merely growing, it is transforming at a pace that is catching the attention of the entire world. Passenger traffic in financial year 26 alone has touched 191 million on combined domestic and international routes. If you talk about India's commercial fleet, it is set to reach 1100 aircrafts by 2027 and it will triple by 2035 in the next 10 years to up to 2250.
0: विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशंकरले वैश्विक आर्थिक स्थिरताको स्तम्भको रूपमा भारतको बढ्दो भूमिकाको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समृद्धिमा देशको महत्वपूर्ण योगदानमाथि प्रकाश पार्नुभयो। श्री जयशंकरले सुरिनाममा सुरिनामी समाजका विभिन्न वर्गका प्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गर्दै यो कुरा बताउनुभयो। उहाँले हालैको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै भन्नुभयो, यस वर्ष वैश्विक विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफको अनुमान अनुसार भारतले कुल वैश्विक विकासमा 17% योगदान दिँदछ। यसले स्पष्ट हुँदछ कि भारतले 2026 वैश्विक वास्तविक सकल घरेलु उत्पाद वृद्धिमा 17% महत्वपूर्ण योगदानका साथ विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढ्दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाको रूपमा आफ्नो स्थान कायम राख्नेछ। समाचार आकाशवाणीबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। ताजा समाचार जान्नका लागि श्रोताहरूले सोसियल मिडिया ह्यान्डल एक्स @AIRNewsKarsiang अनि

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4 बजने वाले हैं। समाप्त होती है हमारी आज की ये सभा। सायकालीन प्रसारण सेवा में आपके समक्ष फिर मुलाकात होगी, लेकिन 100.1 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती का कार्यक्रम जारी रहेगा। नमस्कार।

मैं वहीं रुक गई। बेटा, सारी किताबें एक साथ रख ली है ना? अकेले क्यों परेशान हुई? मैं तो आ रही थी ना, मैं रखवा देती। मैंने उसका सूटकेस अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसने सूटकेस की ओर देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। मेरा मन कर रहा था उसे अपनी तरफ खींचकर खूब कस के गले लगा लूं, उसका सारा दर्द अपने आंचल में छुपा लूं, लेकिन उसके पथराए व्यवहार से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डर लग रहा था कहीं इस बार भी मैं इसे खो न दूं। पता नहीं ये कैसी पीढ़ी है, इन्हें ज्यादा प्यार दिखाओ तो ये बिदक जाते हैं, पर इसके नजरिए से सोचती हूं तो इसका बर्ताव ठीक लगता है। इतनी छोटी सी उम्र में इसने कितनी बड़ी दुनिया देख ली, दुखों के न जाने कितने रंग इसकी नाजुक हथेली में लगे। ऊपर वाला भी कभी कभी किसी के साथ बड़ी नाइंसाफी करता है। अनुष्का की आंखें मुझसे मिली और फिर सड़क की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में बहुत सारे प्रश्न तैर रहे थे। अनुष्का ने अपनी आंखें मेरी आंखों पर चिपका दी। हाँ, कहने के साथ साथ वो सारे प्रश्न मेरे कानों में गूंजने लगे जो मुझसे पूछे गए थे। इस मशीनी युग में रिश्ते से ज्यादा कागज की अहमियत है। मम्मी, मेरी ज्यादातर किताबें वहीं पड़ी हैं, मैं एक बार फिर आऊंगी ले जाने के लिए। अनुष्का की आवाज बहुत मध्यम थी। बिल्कुल बेटा, तुम जब चाहोगे आ जाना, मैं तुम्हें लेकर आऊंगी। कहते कहते मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था, आवाज भर्रा गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं इसी घर में अकेले रहने का ये फैसला न कर ले। इस ख्याल से ही मेरा दिल बैठ गया। 3 बरस मैंने अनुष्का के बिना कैसे बिताया ये मेरा दिल ही जानता है। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच।

पूरे रास्ते कार की खिड़की से बाहर देखती रही। कई बार उसने टिश्यू पेपर से आंखों को दबाया, शायद भराए पानी को सुखा रही थी। उसकी आंखें गोलाई में ऐसे घूम रही थीं जैसे सड़क के किनारे दुकानों पर लिखी हर इबारत को वो पढ़ रही हो, जबकि वो तो सिर्फ अपने आप से गुफ्तगू कर रही थी। मैं उसकी ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे जबड़ा लॉक हो जाता। डर लग रहा था कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए और वो मेरे साथ चलने से इनकार कर दे। इन 3 बरस में बचपन के सुनहरे रंग से अलग किशोरावस्था का चंपई रंग इसके गालों पर निखर आया है। हालात ने इसे जल्दी से सयानी बना दिया है। पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी और वक्त के उस एक पल से मैं बाहर आ गई। देखो बेटा अनुष्का, ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। अनुष्का ने जब दहलीज पार की तो एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। घर सजा धजा, दीवारों पर वही तस्वीरें टंगी थीं, रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड की जंगल बुक और भी उसकी पसंद की तमाम किताबें कमरे में जस की तस सजी थीं। उसकी आंखों के सामने पुराने घर की टूटी अलमारी, माँ के कपड़ों से भरी संदूक और रसोई में रखी चूल्हे की आंच पर खाना पकाती माँ का चेहरा घूम गया। लाचार, बेबस, जीर्ण माँ से वो असंख्य सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो कोई सवाल वो पूछ नहीं सकी और माँ विदा हो गईं। वो इस दुनिया से चली गईं। कई बार अनुष्का ने पूछना चाहा, हर बार वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टाल देती। वैसे भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझते इंसान के प्रति दया भाव ज्यादा होता है, प्रेम कम। अनुष्का कभी अपने इस कमरे को देख रही थी जो उससे कहीं छूट गया था, कभी वो उस घर को याद कर रही थी जिसे अभी अभी छोड़कर आई थी। दरवाजे पर खड़ी उसकी आंखों में समंदर सा ज्वार था, आंखों में जंगल था जो उसके मन की वीरानी को बयां कर रही थी। चौखट के उस पार वही घर था, दीवारें, खिड़कियां, आंगन, सब कुछ वैसा ही, लेकिन उसका मन मानो हजार टुकड़ों में बटा पड़ा था। उसने गहरी सांस ली। क्या मैं सचमुच लौट आई हूं? लेकिन किस रूप में? कहीं फिर यहां से कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा मुझे? कब मेरी किसको जरूरत पड़ जाए और मैं उसके काम आ जाऊं? आखिर उस घर में अपनी माँ की जरूरत बनकर ही तो मैं गई थी ना। माँ के लिए मैं सिर्फ जरूरत थी। उसकी आंखों में स्मृतियों का सागर उमड़ आया। ये वही घर था जिसे छोड़कर अनुष्का भटकती रही, कानूनी लड़ाइयों और अनचाहे सवालों के बीच अब फिर उसी चौखट पर आ खड़ी थी। उसका मन भारी हो रहा था।

लौटकर मां ने मुझे अपनाने का दावा किया था, वही मां जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा अपना लिया। किसी ने मेरे भीतर की ज्वाला को जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे जज्बात का फैसला हर बार कानून करेगा। मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी, कितने दिन रहूंगे, इसका निर्णय कानून ने किया। आखिर मुझे क्यों, मां के अधूरेपन का बोझ मुझे क्यों ढोना पड़ा? आखिर मैंने क्या गुनाह किया था, क्या बात थी आखिर? मैंने उसके कंधे को सहलाया, उसने अपनी पलकें उठाई, मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में अपनापन पाकर मुझे राहत मिली, सुकून मिला। अनुष्का की पनीली आंखों में टूटी हुई स्मृतियों का गुबार था जिसे मैं लगातार देख रही थी। फिर अचानक मैंने उसे खूब कस के सीने से लगा लिया और उसके भीतर का झरना फूटकर देर तक बहता रहा और मेरे भीतर की ममता देर तक उसे भिगोती रही। मैं उसे बहुत देर तक सीने से लगाए बैठी रही। फिर धीरे धीरे उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा, हर कोना मानो उसकी चुप्पी सुन रहा था। एक मेज पर रखी पुरानी चादर, दीवार पर धूल जमी तस्वीरें और बंद खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ अपना सा लगा। वो सीधी खिड़की तक गई, उसने खिड़की खोली, धूप का एक सुनहरा टुकड़ा कमरे में भर आया। उसने सूटकेस का जिप खोला, उसमें से कुछ वो तलाशने लगी। कुछ किताबें उसी घर में छूट गई हैं, सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपने सामान सूटकेस से बाहर निकालने लगी वो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मैं रसोई में चली गई। अनुष्का के लिए फ्रैंकी और ब्रेड टोस्ट लेकर लौटी तो देखा वो अपनी पुरानी ड्राइंग बुक पलट रही थी। वाटर कलर का डब्बा और ब्रश मेज पर रखा हुआ था। कितनी जुनूनी है ये लड़की। सचमुच अजीब है। सेकंड क्लास में पढ़ती थी तभी कितनी सुंदर पेंटिंग करने लगी थी। संस्कृति मंत्रालय के कला विभाग में एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इतनी छोटी सी उम्र में इसने फर्स्ट प्राइज ले लिया था। जिंदगी का वो सबसे खुशगवार लम्हा था जब गोद में बैठी अनुष्का ने मुस्कुराते हुए अपने नरम हाथों का घेरा मेरे गले में डाल दिया था। उसे जब पहली बार घर लेकर आए थे तो घर पहुंचकर एक छोटी सी पार्टी दी थी हमने, और बस उसकी सारी थकान, कानूनी झंझट, समाज के ताने सब गायब हो गए थे। कितना सुनहरा समय था वो, आंखों के सामने जैसे अभी ठहर गया है।

उस रोज अनुष्का ने मुझे पहली बार माँ कहा था, तब जैसे घर में फूलों की बरसात हुई हो। वो पैदाइशी ही उम्र से दो कदम आगे थी। अनुष्का की ड्राइंग बुक मैंने अपने हाथ में ले ली और पलटने लगी। एक पन्ने पर मेरी निगाह अटक गई। आंखों के सामने कागज का वो पन्ना याद आ गया जिस पर मैंने हस्ताक्षर किया था। सर्दी की सियाह रात थी। मैं और नीरव किसी शादी में जा रहे थे। हम जंगल से गुजर रहे थे। यूं कि जंगली जानवरों के डर से हम जंगल को जल्द ही पार कर लेना चाह रहे थे। नीरव गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे थे। ठंडी और कुदरती हवा खाने की गरज से मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया हुआ था। एसी बंद था। गहन निर्जन सन्नाटे में झींगुरों की तेज आवाज के बीच अचानक झाड़ियों से आती रोने की पतली सी आवाज ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और हम बड़े निर्भीक हो गए थे। उस समय रात के इस बीहड़ सन्नाटे में कराह भरी महीन महीन रोने की आवाज समझने में खासी परेशानी हो रही थी कि किसी इंसानी बच्चे की कराह है या कोई जंगली जानवर का बच्चा है या कोई छोटा मेमना जो बिल्कुल नवजात शिशु जैसा है। हम सड़क से थोड़ी दूर पेड़ों के झुरमुटों के बीच पहुंच गए थे। सामने कुछ सूखी डालियां पड़ी थी, जिन्हें हटाया तो कंबल और सफेद कपड़ा जैसे कुछ दिखाई दिया। हम और नजदीक गए, उस आकृति के और करीब गए और करीब गए। अरे, ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज लग रही है। नीरव, ऐसा लग रहा है कोई बच्चा है। ये कपड़े में लिपटा कोई बच्चा लग रहा है, नवजात शिशु। ओह, हमने फौरन गाड़ी से टॉर्च निकाला और ओस में नहाए पेड़ों पर हम रोशनी फेंकने लगे इधर उधर। तभी टॉर्च जब उस झाड़ी पर पड़ी जहां कंबल और सफेद कपड़ा जैसा कुछ दिखाई दिया, उस पेड़ के नीचे नजदीक गए तो देखा कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची कांप रही थी। उसका रोना अनवरत जारी था। मेरा तो कलेजा जैसे मुंह को आ गया था। सवालों का समुद्र जैसे मेरे भीतर समाकर पूरे जंगल को पानी पानी कर देगा। हमने उस नवजात शिशु को उठाया और इधर उधर देखा। फिर मैं सोचने लगी, आखिर समाज ने ऐसा कौन सा वितान रचा है जिसके चलते ये नवजात शिशु अभिशप्त कर दी गई है। ऐसा कौन सा प्रश्न रहा होगा जिसके तहत इसकी मां ने यहां उठाकर इस प्यारी बच्ची को फेंक दिया। उस मां का कलेजा कांपा नहीं होगा। हम संभल संभल के और डरते हुए उस बच्ची के नजदीक पहुंचे। हाथों में ग्लव्स पहने नीरो ने उसे झुककर उठाया और मेरी गोद में डाल दिया। उस बच्ची का स्पर्श पाते ही मैंने अपने पेट में 9 महीने का उभार सा महसूस किया। मेरी छाती में जैसे दूध उतर आया था। मैं ममता से भर गई थी। ऐसा लगा मैं मां बन गई हूं। सुनो, इस बच्ची को ना ऊपर वाले ने हमारी गोद भरने के लिए इन झाड़ियों में भेज दिया है। किस्मत की किताब का एक नया पन्ना लिखा जाने वाला था। कहते हुए मैंने अपना सिर नीरो के कंधे पर टिका दिया था। मेरी गोद की गर्माहट पाकर वो बच्ची थोड़ी देर के लिए जैसे चुप हो गई थी। फिर थोड़ी ही देर में उसके रोने का सुर और ज्यादा ऊंचा हो गया था। उसकी धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज थी। समझ में नहीं आ रहा था उस नन्ही जान को पानी पिलाना ठीक होगा या नहीं। कितने दिन की बच्ची है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था।

उस फूल से नरम नाजुक बच्ची की जान बचाने के लिए हमने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के सायरन से जंगल का वीराना शोर से भर गया। कुछ ही देर में वो मासूम अस्पताल की रोशनी में थी। फाइल पर लिख गया, अननोन गर्ल, उम्र एक दिन। उसकी नाम की जगह खालीपन था, पहचान की जगह एक सवाल। माँ की गोद नहीं, कागज के पन्नों में कैद जिंदगी की शुरुआत। झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची सुबह अखबार की सुर्खी बन गई थी। चाय का प्याला हाथ पे लिए मैं तो जैसे बर्फ बन गई। अब क्या होगा, उस बच्ची का कोई ना कोई उम्मीदवार जरूर आ धमकेगा, फिर मेरी सुनी गोद का क्या होगा? नीरो, ऊपर वाले ने मेरी सुनी गोद भर दी थी, झाड़ी में पड़ी वो बच्ची ऊपर वाले ने मेरे लिए ही तो भेजी थी ना। नीरो, ये बच्ची तो अपने लिए जंगल में कोई छोड़ गया था। चलो चलो जल्दी चलते हैं अस्पताल, वरना कोई भी उस बच्ची को अपना उम्मीदवार बताकर उठा ले जाएगा। चलो चलो जल्दी चलते हैं। देखा है ना, यहां तो हर चीज का व्यापार होता है। वाक्य पूरा होते तक मेरी आवाज कांप गई थी, दिल कलप गया था, जैसे उस नन्ही जान से मेरा बरसों का नाता हो। क्या वो खिलौना है जो अस्पताल से कोई उठा ले जाएगा? अरे वैसे हमने अडॉप्शन के लिए आवेदन तो पहले ही कर रखा है, ये कागजी कार्रवाई होगी और वो बच्ची हमें मिल जाएगी। नीरो ने मुझे दिलासा दी थी। अस्पताल की खिड़की से अंदर झांकते ही मेरे कदम जैसे रुक गए थे। नन्ही सी देह, नींद में सिकुड़ा हुआ चेहरा, वो जैसे कोई अधूरी कविता लग रही थी। मेरा आंचल एक बार फिर ममता से भर गया। ऐसा लग रहा था एक बार फिर मेरी छाती में दूध उतर आया हो। नीरो, यही हमारी बेटी है, यही है हमारी बेटी। मेरी आवाज कांप रही थी लेकिन आंखों में अविश्वास के बादल थे। नीरो ने धीरे से मेरा हाथ थामा, पर उनके भीतर भी वही प्रश्न उमड़ा, क्या सचमुच बच्ची हमें मिलेगी? कहीं कानूनी झंझट में उलझकर इसकी उंगली हमसे छूट न जाए। सपना जैसे पास खड़ा था लेकिन छूते ही ओझल हो जाने का डर मेरे साथ था। बच्ची को घर लाना इतना आसान नहीं था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अदालत, कागजात, पूछताछ, हर जगह शक की नजरें थीं। तो क्या आप बांझ हैं? क्यों चाहते हैं बच्चा? क्या गारंटी है कि आप उसका भविष्य बिगाड़ेंगे नहीं? आप सही तरीके से इस बच्चे को माता पिता का प्रेम दे पाएंगे, ये हम कैसे यकीन करें? ये सवाल मुझे भीतर तक छलनी कर देता था। कई रातें मैंने रोते रोते गुजारी, पर हर सुबह वही दृढ़ वाक्य दोहराती, नीरव, उस बच्ची ने कांटों सी जिंदगी पाई है, हमें उसके लिए कांटों का ये रास्ता भी पार करना होगा। आप सीधे गोद नहीं ले सकते बच्ची को, आपको सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आप इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, डॉक्टर ने सख्त स्वर में समझाया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज, पूरी जांच, ये सब होने के बाद ही आपको बच्ची मिल सकती है। मेरी आंखें फाइल से हटकर बच्ची पर टिक गई थी। कागजों से बड़ी हैं उसकी सांसें, सोचते हुए मेरा मन थोड़ा उदास हुआ था। घर लौटते ही मैंने वो फॉर्म भरा जिसे पूरा करने के बाद वो दुधमुही मासूम मुझे मिल जाएगी, जिसकी अधमुदी आंखें अपनी माँ को देखने को आतुर होंगी। आधार कार्ड की कॉपी, आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, परीक्षा के प्रश्न पत्र की तरह न जाने कितने तरह के प्रश्न थे उसमें, जिनके उत्तर देकर मुझे और नीरो को भरने पड़े वो फॉर्म। प्रत्येक कॉलम भरते हुए मुझे लगता जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो और मैं दीवार पार कर रही हूं। हर दस्तावेज पर कलम चलाते हुए आंखों के सामने उस प्यारी बच्ची का चेहरा आ जाता, उसकी निरीह आंखें,
नन्ही नरम हथेलियां, उसकी निर्बल सांसें, उसकी अकेली पहचान। कल तक जो मेरे लिए कोई नहीं थी, आज वो मेरे दिल की धड़कन बन गई। मेरी सांस, मेरी दुनिया है वो बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई थी। क्या मां बनने के लिए इतना सारा हिसाब किताब करना जरूरी है? मां बनने के लिए इन सारे हिसाब का जवाब देना जरूरी है? मैं खुद से ही सवाल कर रही थी।

कानून का इंतजार करना होगा। 60 दिन तक हम देखेंगे कि असली माँ बाप सामने आते हैं या नहीं। वकील मिस्टर सेठी ने यही तो कहा था। बाद में ये 4 से 6 महीने मेरे और नीरव के लिए सदी से भी लंबे थे। हर दिन एक ही चिंता होती, कहीं ये बच्ची किसी और को सौंप न दी जाए। कानून को हमें अपनी ममता क्यों साबित करनी पड़ रही है? कभी अस्पताल के बाहर खड़े होकर हम सोचते, अपनी उस अबोध बच्ची तक पहुंचने के लिए हमें और कितनी दीवारें पार करनी होंगी। कानूनी कागजात के साथ साथ हमारी और भी तरह से जांच हुई। एक दिन एक सोशल वर्कर घर आई। उन्होंने एक एक करके सब देखा, रसोई, कमरा और वो झूला जिसे मैंने पहले ही सजा रखा था। एक जासूस की तरह उन्होंने मेरे घर का मुआयना किया। अगर बच्ची अपनी असली माँ बाप के बारे में पूछेगी तो आप क्या बताएंगे? उनके ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बेहद चुभने वाले थे ये सवाल। हम उन्हें सच बताएंगे, लेकिन ये भी कि माँ बाप वही होते हैं जो बच्चे को अपनाते हैं, जो बच्चे का पालन पोषण करते हैं,

वो माँ बाप नहीं होते हैं जो पैदा करके झाड़ी में फेंक देते हैं, नीरो ने दृढ़ स्वर में कहा था। फिर पुलिस हमारे घर आई, पड़ोसियों से सवाल जवाब किए, फिर शुरू हुआ हमारे कोर्ट के चक्कर काटना। क्या आप जानते हैं दत्तक संतान के अधिकार असली संतान के समान ही होते हैं? तो क्या आप तैयार हैं इन सब बातों के लिए? जज ने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सख्ती से पूछा था। जज साहब, यही हमारी सबसे बड़ी चाहत है। मुझे बच्ची चाहिए, बच्ची को मां का गोद चाहिए। मेरी सुनी गोद ऊपर वाले ने भर दी है, आप ये बच्ची मुझसे मत छीनिए, लरजते स्वर में मैंने कहा था। फिर अदालत के आदेश पर नोटिस निकाला गया, यदि किसी को इस बच्चे पर दावा करना हो तो 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित हों। महीने भर डर के साए में जीती रही मैं, कहीं कोई उस बच्ची का उम्मीदवार न प्रकट हो जाए। पर ऊपर वाले ने सुन ली, कानून की कलम हमारे हिस्से में आई। और जब कानून की कलम हमारे हिस्से में आई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरी आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा था। मैं खुश थी, लेकिन मेरी आंखों की नदी रुकी नहीं रही थी। हमारी सारी भागदौड़, सारी थकान, सारी बेचैनी उस क्षण पिघल कर एक आनंद की बूंद बन गई थी, जब रुई के गुलाबी फाहे सी नरम नरम वो बच्ची मेरे गोद में आई थी। नीरो भी पिता बनकर निहाल हो गया था। घर का दरवाजा खुला, सर्दियों से सूना आंगन जैसे जीवन से भर गया हो। छोटे छोटे कपड़े टंगे, दूध की खुशबू, खिलौनों की खनक, सब में एक नई रोशनी थी। घर का हर कोना जैसे नन्ही सांसों की आहट से भर गया। झूले में ऊपर की ओर टंगी चक्री गोल गोल घूमने लगी और बच्ची की आंखें भी गोलाई में गोल गोल घूमने लगी। मैं उसे देख देख कर मुस्कुराती रही। नीरो, देखो ना कितनी प्यारी लग रही है ये। पहली बार हंसी है ये। मुझे अपने गाल पर नमकीन पानी का ठंडक महसूस हुआ था, मेरे होठों पर जैसे किसी ने गुलाब की पंखड़ी धर दी हो। नीरो चुपचाप खड़ा देखता रहा, उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर सुकून था, खुशी थी। उसने बच्ची की हथेली पर अपनी उंगली रखी और उस नन्ही पकड़ में उसे अपना भविष्य, अपनी विरासत, अपना पूरा वजूद महसूस हुआ। उस मासूम की एक मुस्कान, एक किलकारी जैसे उनके जीवन का सबसे मधुर संगीत बन गई थी। अगली सुबह की पहली रोशनी खिड़की से छन कर कमरे में आई। नन्ही बच्ची ने आंखें खोली और अचानक मासूम सी हंसी बिखेर दी। उसके रोने और उसकी किलकारी से पूरा घर जैसे जगमगा उठा। उस बच्ची की आवाज ही मेरी सुबह की घंटी है, मेरी पूजा की आरती है। मैंने जैसे ही अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई, नन्ही बच्ची ने कसकर पकड़ ली। उस पकड़ में बड़ी ताकत थी। शाम को आंगन में झूला डाला गया। रात को बच्ची सोती तो मैं धीरे धीरे लोरी गाती। नीरो पास बैठकर मुझे और उस बच्ची को देखता रहता।

अजीब है, कल तक ये चेहरा अजनबी था, ये बच्चे ये अजनबी थी, इसकी सांसें हमारे रूह में बस गई, इसकी किलकारियों ने घर की हर दीवार पर नई धड़कन लिख दी थी। रात को जब बच्ची रोती, मैं नींद से उठकर दूध की बोतल तैयार करती, थकी होती पर उसे लगता जैसे उसकी थकान ही बच्ची की मुस्कान गायब हो जाती है। नीरो दफ्तर से लौटकर सीधे बच्ची की उंगली पकड़ लेता, दिन भर का तनाव उसी पल मिट जाता। रीना, हमने उसे अपनाया नहीं है, इसने हमें अपनाया है, हमारी जिंदगी को इसने अपनाया है, इसने खुशी दी है हमें, नीरो ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था। मैंने बच्ची को सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। मेरे भीतर का अटूट मातृत्व समुद्र में तब्दील हो गया था। तब महसूस हुआ कि मां बनना कितना कठिन होता है, लेकिन मातृत्व का सुख पाना भी किसी नियामत से कम नहीं। वो बरसात की भोर थी, आंगन की मिट्टी में ताजी महक फैली हुई थी, पत्तियों से टपक जैसे कण हवा में चमक रहे थे। मैंने खिड़की खोली तो भीतर तक ठंडी बयार आ गई। झूले बैठी नन्ही काया जाकर बारिश की बूंद बारिश कर रही थी, जैसे बादलों से बातें कर रही हो। क्षण

0: उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक कमजोर थकी हुई स्त्री खड़ी थी, उसके चेहरे पर पीड़ा थी। मैं इसकी जन्म देने वाली माँ हूं, मेरी प्रश्नवाचक निगाहों को भांपते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे धरती हमारे पैरों तले खिसक गई हो। इतनी मुश्किलों के बाद तो हमारी मुराद पूरी हुई, फिर यह अचानक ये मुसीबत कहां से आ गई? मेरे होठ बुदबुदाए, लेकिन स्त्री ने अनुष्का को देखकर अपने कांपते हाथ जोड़ ले। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकी, हालात ने मुझे बेबस कर दिया, अब मेरे पास समय नहीं बचा है। मैं चाहती कुछ समय के लिए मैं इसे अपने घर ले जाऊं। वैसे तो तुम्हारी गोद ही इसकी सच्ची दुनिया है। उसने अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछी, फिर उसने अनुष्का की मासूम हथेली छू ली और बच्ची के शरीर में एक निशान भी बताए। बच्ची ने बिना सोचे उसकी उंगली पकड़ ली और अगले ही पल खिलखिला उठी। उसकी मुस्कुराहट की खनक ने मेरे भीतर से वीरान सन्नाटा भर दिया। अनुष्का के बगैर जीने की कल्पना मात्र से मैं सिहर गई। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। कभी कभी अजनबी चेहरा बड़ा टुकड़ा बन जाता है। जिंदगी ने हमें राह पर ला खड़ा किया जहां से रास्ता नहीं नजर आ रहा था। वो औरत जिसने मां बनने का दावा किया है, वो कैंसर की मरीज है, वो स्टेज में। उसने वो सारे कागजात सामने रखे हैं जिससे उसे अनुष्का को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन दिमाग और दिल की लड़ाई में दिल को ही हथियार डालना पड़ता है। फिर से अदालत की सीलन भरी दीवारें, बोझिल हवा और कोनों में सिसकते सन्नाटे, जज का फैसला, जन्म देने वाली मां को कैंसर है, उसकी स्थिति गंभीर है, इसलिए बच्ची का अधिकार उसी के पास रहेगा। हालांकि इस सब प्रक्रिया में कई बरस बीत गए, अनुष्का की जन्मदात्री मां भी और ज्यादा कृशकाय हो चुकी थी। इस दौरान उससे कई मर्तबा मुलाकात हुई। उसकी तकलीफ देह हालात के बारे में जानकर अनुष्का को उन्हें उनकी बची खुची जिंदगी के लिए सौंप देना ही इंसानियत थी। उसकी आंखें बुझती लौ जैसी थीं। वो मेरे जीवन की सबसे बोझिल रात थी। रात हौले हौले जा रही थी, लेकिन सुबह की कोई आमद नहीं नजर आ रही थी। उसमें भीगी पेड़ों की शाखें उदास हो गई थीं। अनुष्का का घर में आने का समय पता ही न चला, लेकिन उसे कुछ समय के लिए ही सही, उसके जाने का लम्हा सदी बन गया था। अनुष्का बहुत बोलती थी, बहुत प्यारा बोलती थी। उस रात जब उसे इस घर से उस घर, यानी उसकी माँ के पास ले जाया जा रहा था, तब वो जैसे बेजान गुड़िया में तब्दील हो गई थी। तब तक पता चल चुका कि जहां जा रही है असली मां है, मेरी तो वो दत्तक पुत्री है। मेरे भीतर तूफान कुलाचे मर रहा था, नीर और निर्विकार भाव से इस नियत को स्वीकार कर रहा था। मेरे कानों में सिर्फ अनुष्का की किलकारियों की गूंज रह गई। गुलम है जब पहली बार उसने मां पुकारा था, जब बुखार में हमने जाकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी थी, वो मासूम मुस्कान जो उनके जीवन का एकमात्र संगीत थी, सब कुछ जैसे पल स्मृतियों की तिजोरी में रख उठे थे। अनुष्का ने मासूम निगाहों से मेरी ओर देखा। हम सब ने अपनी सुविधा अनुसार अनुष्का का घर तय कर दिया, लेकिन अनुष्का के नजरिए से किसी ने नहीं सोचा। वो अपनी मां के घर जब पहुंची तो उसके रोने का सिलसिला रुका ही नहीं।
1: फिर जब वो रुका तो उसकी सुनी आंखें मेरा आंचल तलाशती रही। मैं उससे जब मिलने जाती मेरा आंचल पकड़ लेती, मुझे आने ही नहीं देती थी। ऐसे कसकर लिपट जाती जैसे मैं ही उसके जन्म देने वाली मां हूं। वक्त ने उसे जल्दी समझदार और बड़ा बना दिया था। उसकी सूनी आंखों में सपनों की जगह इंतजार ठिठक गया था। घर में रखे खिलौनों को हाथ न लगाती, खामोशी उसकी सदा बन गई थी। उसे जैसे हम दो परिवारों ने एक छोटी बच्ची से वस्तु बना दिया था। उसकी पीड़ा को महसूस कर मेरा दिल कचोटने लगता था।

किताबों के ऊंचे रैक से एक मोटी किताब गिरी और मैं जैसे यादों के ऊंचे पहाड़ से धम से नीचे आ गिरी। पर इस बार पहाड़ से नीचे आने पर अनुष्का जैसी प्यारी फूल मेरे सामने है। उसने दरवाजा जैसे ये आखिरी सहारा हो, कह रही थी, तुमने मुझे सकोगी अनुष्का? तुम झाड़ी थी अकेली और डरी हुई, मैंने तब तुम्हें मैं कभी उस वादे को हमेशा निभाती रहूंगी। मैं अपने सीने से लगा अनुष्का के होंठ का, याद आया कि उस दिन उसने पहली बार किस अनजानी बाहों में अपने दर्द को ढक लिया। उस औरत की हुई थी वही छाती, अनुष्का की उंगलियां चौखट से ढीली हो गई। उस पल दोनों के बीच बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच का पुल, तर हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी। शाम की धूप खिड़की से छनकर कमरे में उतर रही थी, मानो वर्षों से बंद पड़े सन्नाटे को सहलाने आई हो। दीवारों पर समय की धूल थी, पर उस धूल में भी ममता की डोर थी। अनुष्का धीरे धीरे कमरे में चली आई, उसकी उंगलियां दीवार से छू गईं, जहां पहले मां ने तस्वीर टांगी थी। तस्वीर अब वहां नहीं, सिर्फ कील बाकी थी। वो मानो उसकी अपनी जिंदगी थी, अधूरा खाली इंतजार कर रही। नहीं थे बल्कि अपनी यात्रा की थकान के थे। उसने की तस्वीर पर माला पहनाते हुए धीमे स्वर में कहा, तुमने मुझे जन्म दिया और छोड़ दिया, फिर लौटकर मुझे पाया दिया। लेकिन मैं अब तुम्हारी अधूरी छाया में नहीं रहना चाहती, मैं अपना जीवन खुद ली। अनुष्का के शब्द हवा मानो घर की दीवारें भी सुन, अनुष्का की पलकों पर आंसू की बूंद ठहर गई। उसने खिड़की खोली, सूरज की किरणें भीतर उमड़ आईं, कमरा अचानक उजाले से भर गया, जैसे अंधेरे की बिखर गई हो। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजा पलट कर देखा, वही चौखट अनचाही शुरुआत की गवाह थी। अब उसी चौखट पर खड़े होकर उसने स्वर में कहा, मैं अब किसी की छोड़ी हुई बच्ची नहीं, मैं अब एक माँ की बेटी हूँ। यही घर अब मेरी पहचान बनेगा, अब मैं इस घर से कहीं और नहीं जाऊंगी। अनुष्का की आंखों में उदासी की धूसर बादल की बजाय पहली बार इंद्रधनुष था, एक नई शुरुआत का। उस पल मानो वर्षों की वेदना धूप की तरह पिघल गई। बाहर आकाश में ढलता सूरज सुनहरी छटा बिखेर रहा था।

0: नमस्कार। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज एवं 100.1 एफएम पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सायंकालीन प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में आप समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। श्री शाह ने इसकी घोषणा की।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कल सुबह 11 बजे रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्य की पहली भाजपा सरकार शपथ लेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। आयोग ने कहा है कि हाल ही में संपन्न 803 विधानसभा सीटों पर चुनाव से जुड़े सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि

0: कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मंदिर पर पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए थे। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बनकर उभरा है। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिमरनजीत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू झू को 6-0 से हराया। कल भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में प्रवेश किया था। वहीं दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें पायदान पर है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत प्रसारित की जाएगी। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

आकाशवाणी 90, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ दोस्तों। आज हम सभी आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। वर्ष 1936 में शुरू हुई आकाशवाणी ने देश को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया है और इस कार्य में आप श्रोताओं का हमें साथ मिला। इसी साथ से हमें बल मिलता रहा और हम अपने कार्य को और सुंदर बनाते रहे। दोस्तों, आज भी यह आकाशवाणी का केंद्र है। यह शब्द सुनते ही हमारे मन में अपनापन और विश्वास जाग उठता है। 90 वर्ष की यह यात्रा समर्पण, सेवा और जन संचार की अद्भुत मिसाल रही है और हम आपसे वादा करते हैं कि यह मिसाल और भी बेहतर होगी और भी लंबे समय तक हम आपसे जुड़े रहेंगे। तो चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत एक सुविचार के साथ करते हैं, हमेशा की तरह। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। अर्थात दोस्तों, समय हमारे जीवन की सबसे कीमती संपत्ति होती है। जो व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ ना गवाकर पढ़ाई, मेहनत और अच्छे कार्यों में लगाता है अपने समय को, वही अपने लक्ष्य तक पहुँच पाता है और जीवन में सफलता हासिल कर लेता है। इसी के विपरीत जो लोग समय को आलस्य और बेकार कामों में नष्ट करते हैं वे अक्सर पीछे रह जाते हैं। इसीलिए हमें हर पल सही उपयोग समय का करना चाहिए और अपने समय का महत्व समझते हुए उसे अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, तभी जाकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, ये तो थी सुविचार की बातें। चले चलते हैं अपने विषय की ओर और आज हम बात करेंगे हमारा स्वास्थ्य, पोषक आहार, इस विषय पर। दोस्तों, कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम अपने जीवन के प्रत्येक कार्यों को पूरी ऊर्जा और पूरे उत्साह के साथ कर पाएंगे। दोस्तों, एक स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित और पोषक आहार अत्यंत आवश्यक होता है। आज की भाग दौड़ भरी जीवन शैली में लोग

0: स्वाद और सुविधा को अधिक महत्व देने लगे हैं। इसके कारण स्वास्थ्य संबंधित अनेक समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे समय में हमें करना क्या है? ऐसे समय में पोषक आहार का महत्व बढ़ जाता है और हमें पोषक आहार अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा। दोस्तों, पोषक आहार वह भोजन होता है जो हमें हमारे शरीर के विकास और सही कार्य करने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में प्रदान करता है। हमारे भोजन में प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण और जल का संतुलित होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए दोस्तों, हरी सब्जियां खाएं, ताजे फल, दूध, दाल, अंकुरित अनाज और सूखे मेवे ये अपने भोजन में जरूर डालें, क्योंकि ये हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं और साथ ही साथ ये खाद्य पदार्थ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, रोग की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और हमें बीमारियों से लड़ने में पूरी मजबूती के साथ हमारे लिए खड़े होते हैं। इसीलिए हम प्रयास करें कि आज के समय का जो ये फास्ट फूड है, जंक फूड है, इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे और अच्छे भोजन यानी पौष्टिक आहार अपने जीवन में डालेंगे, ताकि इससे आपके जीवन में कभी भी मोटापा, मधुमेह, कमजोरी जैसे बीमारियों को से आप बचे रहें और आप स्वस्थ रहें। आइए इस बात को अपने जीवन में उतारते हुए चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
1: You see, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere, because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity.
2: What?
3: My name is Anthony Gonsalves.
4: Gonsalves?
3: Right. My name is Anthony Gonsalves.

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: माय
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: हाउ क्यूट,
0: राइट।

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो, सेबेस्टियन।
2: नो,
1: गोल्डी सोल्डी।
2: नो, एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओह यस।

0: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
1: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
0: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: कृपया ध्यान दें, रेलगाड़ी पर रंग, गुब्बारे, पत्थर, गोबर, कीचड़ आदि ना फेंकें। इससे यात्री घायल हो सकते हैं।
3: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन व प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता का ध्यान रखें। नशे की हालत में रेल यात्रा ना करें।
4: इसके अलावा अपरिचित व्यक्ति से खाने पीने की वस्तु स्वीकार ना करें। रेलवे से संबंधित किसी भी सहायता या सुझाव के लिए 139 डायल करें।
3: ये जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700014242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
8: दोस्तों, इस अंतराल के बाद आइए बना चलते हैं बातचीत की दुनिया में। और दोस्तों, आज हम लोग बना रहे हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। दोस्तों, ये दिन, ये दिवस यानी विश्व रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष 8 मई यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। यह दिवस मानवता, सेवा, त्याग और करुणा का संदेश देता है वाले महत्वपूर्ण उस दिन का देने के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। दोस्तों, इस दिन को रेड क्रॉस डे आंदोलन के संस्थापक हेनरी ड्यूनॉट के जन्मदिन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हेनरी ड्यूनॉट एक ऐसे महान समाजसेवी थे जिन्होंने युद्ध में घायल और असहाय लोगों की पीड़ा को बहुत निकट से देखा था, और इस दर्द को उन्होंने महसूस किया और यह संकल्प लिया कि मानवता की सेवा के लिए एक ऐसे संगठन की स्थापना की जाएगी जो बिना किसी भेदभाव के हर ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने के लिए पहुँचेगी। उनके इस महान विचार से रेड क्रॉस संस्था की स्थापना यानी उसकी शुरुआत हुई, और आज यह संगठन पूरे विश्व में सेवा का कार्य करती जा रही है। दोस्तों, रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन की रक्षा करना है, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना तथा संकट के समय लोगों को सहायता प्रदान करना है। यह संस्था युद्ध, बाढ़, भूकंप, महामारी या किसी दुर्घटना और अन्य किसी प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों तक सहायता पहुंचाने का कार्य करती है। रेड क्रॉस के स्वयंसेवक दिन रात मेहनत करके घायल लोगों की सेवा करते हैं, ज़रूरतमंद लोगों तक भोजन और दवाइयां पहुंचाने का कार्य करते हैं तथा लोगों को प्राथमिक उपचार की जानकारी भी देते हैं। दोस्तों, आज के समय में जब संसार अनेक प्रकार की समस्याओं और आपदाओं का सामना कर रहा है, तब रेड क्रॉस जैसी संस्थाओं का महत्व और भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। कोरोना महामारी के समय भी इस संस्था ने लोगों तक दवाइयां, भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाई थी। रेड क्रॉस केवल आपदा राहत तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि यह रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी कार्य करती है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि रक्तदान को महादान कहा जाता है, इसीलिए एक यूनिट रक्त किसी व्यक्ति की जीवन की रक्षा कर सकती है। हमारे देश में भी अनेक स्थानों पर रेड क्रॉस संस्था द्वारा रक्तदान शिविर लगाया जाता है, और लोगों को मानव सेवा के लिए प्रेरित भी किया जाता है। दोस्तों, इस संस्था से हमें भी अपने जीवन में सेवा और सहयोग की भावना को अपनाना चाहिए। यदि हम किसी दुखी, घायल या ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करते हैं तो यही सच्ची मानवता है। आज समाज में हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम, दया और सहानुभूति की आवश्यकता है। इसीलिए रेड क्रॉस डे का संदेश हमें यह सिखाता है, यह जो दिवस है यह मनाते हुए हमें यह सीख लेनी चाहिए कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आइए इन्हीं बातों के साथ चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर।

इस गीत के बाद आइए अपने चलते हैं बातचीत की दुनिया में। और दोस्तों, किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं के अंदर होता है, उसके युवाओं के ऊपर होता है। यदि युवाओं के पास सही दिशा, मजबूत लक्ष्य और प्रेरणा हो तो वे समाज और राष्ट्र दोनों का भविष्य बदल सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में हमारे देश के अनेक युवा खेल, विज्ञान, शिक्षा और कला के क्षेत्र में नई ऊँचाइयाँ प्राप्त कर रहे हैं। उन्हीं प्रेरणादायक युवाओं में से एक हैं आयुष शेट्टी, जिन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर कम उम्र में भी देश भर के युवाओं के लिए प्रेरणा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। दोस्तों, आयुष एक उभरते हुए भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि सफलता केवल बड़े साधनों से नहीं, बल्कि बड़े सपनों और निरंतर प्रयासों से प्राप्त की जा सकती है। बचपन से ही उन्हें बैडमिंटन खेलने में विशेष रुचि थी और उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया था। एक खिलाड़ी के जीवन में अनुशासन, समय का सही उपयोग और निरंतर अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण होता है, और आयुष शेट्टी ने इन सभी गुणों को अपने जीवन में अपनाया और धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। दोस्तों, आज के युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे जल्दी निराश हो जाते हैं। छोटी छोटी असफलताएं उन्हें अपने लक्ष्य से दूर कर देती हैं, लेकिन आयुष का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयाँ सफलता का रास्ता रोकने नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने आती हैं। उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया, कठिन मुकाबले खेले और लगातार अपने खेल को बेहतर बनाया, और यही निरंतरता और निरंतर प्रयास उन्हें आज युवाओं का प्रेरणा स्रोत बनाता है। आयुष की सबसे बड़ी विशेषता उनका आत्मविश्वास और संघर्ष करने की क्षमता है। जब वे बैडमिंटन कोर्ट में उतरते हैं तो उनके अंदर जीत का उत्साह और देश के लिए कुछ कर दिखाने का जुनून साफ दिखाई देता है। उनकी तेज खेलने की शैली, अनुशासन और मेहनत यह संदेश देती है कि यदि युवा अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहे तो वे किसी भी लक्ष्य के में, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो आइए हम भी उनसे कुछ सीखते हैं और अपने क्षेत्र में बेहतर करने का प्रयास करें। आइनी बातों के साथ चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गीत। आपको तो पता है बातें बहुत होती हैं करने को, लेकिन क्या करें, समय की पाबंदी है। समय हो चुका है जाने का, लेकिन जाने से पहले आइए नज़र डाल लेते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। दोस्तों कल आपसे प्रश्न पूछा गया था कि सूरज का सातवां घोड़ा किसे कहा जाता है। हमेशा की तरह इसका उत्तर आपको अगले दिन मिलता है, तो मैं आपको बता दूँ कि इसका उत्तर होगा धर्मवीर भारती। दोस्तों आज का प्रश्न है कि कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है। मैं अपना प्रश्न एक बार पुनः दोहरा देता हूँ कि कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है। हमेशा की तरह इसका उत्तर कल मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
3: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
2: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: कृपया ध्यान दें, रेलगाड़ी पर रंग, गुब्बारे, पत्थर, गोबर, कीचड़ आदि ना फेंकें, इससे यात्री घायल हो सकते हैं।
5: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन व प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता का ध्यान रखें। नशे की हालत में रेल यात्रा ना करें।
6: इसके अलावा अपरिचित व्यक्ति से खाने पीने की वस्तु स्वीकार ना करें। रेलवे से संबंधित किसी भी सहायता या सुझाव के लिए 139 डायल करें।
5: ये जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: पंचों जय हिंद। हाँ भैया, देखा नारा लागल, अब अपन बैठकी शुरू भइल। भैया कौनो न कौनो दिवस पर हम मन के चर्चा कइल जाला, तो आज भैया यही तरह विश्व रेड क्रॉस दिवस हवे, जौन की रेड क्रॉस अउरी रेड क्रिसेंट आंदोलन के स्वयं सेवकन खातिर माननीय मानवीय कार्यन खातिर समर्पित बा। यही दिने हेनरी डुनेट के जयंती भी बा, जौन ए संस्था के संस्थापक रहने। यह दिवस युद्ध आपदा स्वास्थ्य आपदा स्थिति में पीड़ित मानवता खातिर सेवा के समर्पित रहेला।
1: भैया बिल्कुल सही कहला, और जौन कहला ना कि इनकर जन्म 8 मई के भइल रहल, यही के उपलक्ष्य में हर साल जौन बा 8 मई के दिन विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनावल जाला।
0: बिल्कुल भैया, और ये संस्था के संस्थापक हेनरी डुनेट के उद्देश्य रहे कि अगर कहीं भी दुनिया में युद्ध होता, एक बार ऐसा भइल रहे कि भैया 1863 में जौन रेड क्रॉस दिवस जौने के स्थापना भइल, तो ऊपर एक कहीं युद्ध देखलन 1859 में सेल फेरिनो की लड़ाई में हजारों सैनिकन के बिना देखभाल के चलते उनकर मृत्यु हो गई है। वही के देख के इनकर मन प्रेरणा भइल और तब से ही अपन एक संगठन के स्थापना कैलन, और तब से भैया हेनरी डुनेट द्वारा स्थापित रेड क्रॉस दिवस पूरी दुनिया में मानवता भाव सेवा भाव के तहत मनावल जाला। भैया 2026 के जौन अब की उद्देश्य बा इहे बा कि मानवता के जीवित रखना, जौन अब करी कर थीम बा रेड क्रॉस दिवस के, कि मानवता हर हाल में कोनो स्थिति होके लेकिन मानवता पूरी दुनिया में मानवता जीवित रहे।
1: भैया बिल्कुल सही कहा भाई, बत कही हमन के आगे भी हुई, लेकिन पंच भाई एगो गीत गाओ नहीं सुने, फिर हमन के बत कही कल जाये।

0: हाँ भैया, अमरनाथ यादव की आवाज़ में एक हम उनके लोकगीत सुन गए, पंच भाई भी सुन लें। और भैया देखा, कहल जाला कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ हवे। कहल भी गई बा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क के निवास होला।
1: और
0: और
1: भैया हमारे जब स्वस्थ नहीं रही तो
0: हाँ
1: कोनो काम धाम जोन बा सुचारू ढंग से हो ना पाई,
0: नहीं हो पाए भैया।
1: और तमाम तरह का समस्या बा पंच भाई लोगों के हो जाला। ये समय अक्सर सुनने में आवला के देखा फलाने का भैया पित्ताशय में पथरी हो गई,
0: हाँ
1: फलाने के जोन बा किडनी में पथरी हो गई।
0: हाँ हाँ
1: और ई पथरी के भैया अगर समय पे जोन बा इलाज नहीं भेल, समय पे निकरवाओल ना गई,
0: हाँ हाँ
1: तो बादी में चल के कैंसर के जोन बा संभावना मन हो
0: हाँ
1: जाला।
0: हाँ
1: जेकरे
0: जो कि
1: पित
0: जानलेवा हो
1: हाँ
0: जात
1: जेकरे
0: हुए।
1: पित्ताशय में भैया पथरी के समस्या बा, यमहन कैंसर के का संभावना हो सकेला। आज यही विषय पर पंच भाई एगो जानकारी सुने डॉक्टर संतोष कुमार कुशवाहा से, और इनसे बत कही कह रहा हूँ मैं मनीष।
0: कहीं केपीओ भी कुशवाहा लगे।
2: श्रोताओं नमस्कार, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं वरिष्ठ डॉक्टर डॉक्टर संतोष कुमार कुशवाहा जी। डॉक्टर साहब पिछले काफ़ी लंबे समय से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सर्जरी विभाग में कार्यरत हैं, और एक लंबा अनुभव रहा है इनका लोगों का उपचार करने का। और आज हम इनसे बात करेंगे पित्ताशय की पथरी में कैंसर की जो संभावना होती है उस बारे में। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आपका स्टूडियो में स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसे एक पित्ताशय की पथरी है, एक बड़ी सामान्य बीमारी अब होती जा रही है, तमाम लोगों में देखा जा रहा है, तो क्या कारण होते हैं और क्या लक्षण होते हैं जिससे हम कि आम आदमी प्राथमिक स्तर पर ही ये संभावना व्यक्त कर सके कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कुछ उसको इस तरह की संभावना है?
3: पित्ताशय की पथरी जो है, ये सबसे पहले इसमें पित्त कैसे बनता है, इसका संचरण कैसे होता है, उसके बारे में जानने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको हम बताएंगे कि पित्ताशय की पथरी में कितनी परसेंट संभावना होती है कैंसर बनने की, और कब इसका इलाज हम करा लें ताकि आगे संभावना ना हो कि इसमें इस तरह की परेशानी हो। पित्ताशय पित्त की थैली को बोलते हैं। पित्त जो होता है लीवर में, जिगर जिसको बोलते हैं, उसमें बनता है और संचार के माध्यम से वो नीचे आता है और पित्त की थैली में इकट्ठा होता है। उसके अनुसार उसके बाद से उसका नीचे की तरफ आके आंतों में खुलता है, जो नलकी उसकी नलकी के सहारे ये पित्त हमारे आंतों में आती है, जहाँ खाना को पचाने के लिए इमल्सिफिकेशन करने का इसका काम आता है। पित्त की थैली में जब पित्त बहुत गाढ़ा होने लगता है कभी कभी, तो वही धीरे धीरे कभी कभी कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लगता है, कभी इन्फेक्शन के कारण उसमें पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है। हम लोग इस पूर्वांचल में पानी की भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है, पानी साफ नहीं है, इसके कारण से भी लोगों में पित्ताशय की पथरी बनने का संभावना बढ़ रहा है। खान पान का कुछ इस तरह का व्यवहार है जिसके कारण से पित्ताशय की पथरी बन रही है। हम लोग आजकल अपने खाना उपजाते समय या भोजन उपजाते समय हम लोग ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, वो भी एक कारण है यहाँ पे पित्त की थैली में पथरी बनने का। पित्त की थैली में जो पथरी बनती है वो दो तरह की होती है, एक तो कोलेस्ट्रॉल वाली होती है जो ज़्यादा वसा वाला खाना खाने से और ज़्यादा फैटी लोग जो होते हैं उसमें होता है, दूसरा जो होता है इन्फेक्शन वाली पथरी जो होती है वो ऐसे लोगों में होता है जिनमें इन्फेक्शन के कारण पथरी बनती है। ये दोनों पथरी अगर लंबे समय तक पित्त की थैली में रहें और उसका उपचार न किया जाए तो इन्फेक्शन के कारण वहाँ पे जो पित्त की थैली की जो दीवार होती है उसमें इन्फेक्शन होने के कारण सूजन होने लगता है, वही सूजन बाद में लंबे समय तक रहने के बाद कैंसर का रूप ले लेता है या कैंसर के ट्रांसफॉर्म हो जाती है। 2% लोगों में जिनमें पित्त की थैली में पथरी रहती है, रिसर्च में देखा गया है कि 2% लोगों में कैंसर बनने के चांसेस रहते हैं लॉन्ग लाइफ टाइम में। तो इसलिए अगर पित्त की थैली में अगर पथरी आपको पता चलता है तो डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा पित्त की थैली में पथरी का इलाज ऑपरेशन ही है। ये भी देखा गया है कि पित्त हमारे देशों में तो लोग जनरली मेडिकल चेकअप के लिए रेगुलर नहीं आते हैं, विदेशों में तो ऐसा है कि अगर पित्त की थैली में पथरी है और 1 सेंटीमीटर से छोटी है तो रेगुलर फॉलोअप किया जाता है, अल्ट्रासाउंड में देखते रहते कि पित्त की थैली का कंडीशन क्या है, पथरी बढ़ रही है या पथरी वैसी ही स्थिर है। अगर पथरी बढ़ रही है, 1 से ज्यादा हो रही है तो उसको ऑपरेशन करा लेना उचित होता है। अगर हमारे यहाँ देखा जाता है कि लोग उतना फॉलोअप में नहीं आते हैं तो अगर पित्त की थैली में पथरी का पता चले तो पित्त की ऑपरेशन करा लेना उचित रहता है ताकि भविष्य में कैंसर बनने के चांसेस कम हो जाए।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि पथरी लंबे समय तक अगर है तो फिर वो कैंसर का रूप धारण कर लेती है।
3: जी जी,
2: कुछ लक्षण होंगे जैसे पित्त की थैली में अगर पथरी बन रही है, पित्ताशय में
3: जी
2: पथरी बन रही है, तो कुछ प्राइमरी लक्षण होंगे जो आदमी आदमी अगर
3: बिल्कुल
2: ध्यान दे
3: जी जी
2: तो सही समय पर डॉक्टर के पास पहुंच सकता है।
3: बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। पीत की थैली में पथरी के लक्षण ये है कि जो पीत की थैली होती है लीवर के नीचे होती है, लीवर हमारे दाहिने साइड में होता है जस्ट छाती के वाती के नीचे, हाइपोकॉन्ड्रियम उस स्पेस को बोलते हैं जहाँ पे लीवर होता है उसी के नीचे पीत की थैली होती है। तो अगर आपको पीत दाहिने साइड में चेस्ट वॉल के नीचे या छाती के नीचे अगर आपको पेन शुरू होता है, आदमी को पेट में दर्द होता है, उल्टी जैसी संभावना रहती है, भूख कम लगता है, खाने में अपच जैसा महसूस होता है, तो ये सब एक पीत की थैली में पथरी होने के या इन्फेक्शन होने के लक्षण प्राइमरी लक्षण है। कभी कभी आदमी को बुखार भी आ जाता है, अगर लक्षण पीत की थैली में पथरी होने के कारण इन्फेक्शन हो गया है तो आदमी को काफी तेज बुखार भी आता है। तो एक जनरली देखा गया है कि पीत की थैली में पथरी के कारण बुखार आता है, दर्द होता है और उल्टी होती है। ये तीन चीजें अगर होती है और दाहिने साइड में आपको छाती के बाती के नीचे अगर आपको दर्द हो रहा है तो समझिए कि हो सकता है कि आपके पीत की थैली में पथरी हो या संक्रमण हो। तो ये प्राइमरी लक्षण देख के डॉक्टर को मिलना चाहिए। डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड करके उसको एक बार इन्वेस्टिगेट करके देख लेंगे कि आखिर इन्फेक्शन है या पथरी है या कुछ हो। जब लंबे समय तक पीत की थैली में पथरी रहती है, लोग फॉलोअप में नहीं जाते हैं या कुछ पेन किलर लेके या कुछ अपनी गैस की दवाइयाँ खुद स्व उपचार करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को पता नहीं चल पाता है कि वो पीत की थैली में पथरी के कारण उनको दिक्कत हो रहा है या उनको सोचते हैं कि गैस के कारण ये प्रॉब्लम चल रही है। तो लंबे समय तक जब रहता है तो वही हम बताए आपको पहले ही कि लंबे समय तक रहने के कारण जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन होता है और इन्फ्लामेशन में कैंसर ट्रांसफॉर्मेशन की चांसेस
2: संभावना बढ़ जाती है।
3: तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पीत की थैली में कैंसर हो रहा है तो केवल पथरी के कारण ही होगा, ये भी जरूरी नहीं है। प्राइमरी कैंसर भी हो सकता है पीत की थैली में। सेकेंडरी कैंसर जो है वो 2% पीत की थैली में पथरी वाले लोगों को होता है। तो उसके कारण अगर आपको कभी भी इस तरह का परेशानी किसी को भी श्रोता को या किसी को अपने आसपास में लोगों को है तो उसको। दूसरा, हम ये टॉक इसलिए करना चाहते थे कि हमने ये देखा है कि बहुत सारे हमारे पास जो पेशेंट आते हैं पीत की थैली में पथरी का और लास्ट स्टेज में आते हैं जब उनका कैंसर पूरा फैल चुका होता है या उसका सर्जरी से या किसी और तरीके से बहुत ज्यादा उपचार नहीं हो पाता। इसका कारण ये है कि हमने देखा है कि गाँव में लोग जब इस तरह की दर्द होती है तो क्वैक्स के पास या कुछ ऐसे ओझा गुनी जो लोकल हीलर होते हैं उनके पास जाते हैं, जो ये सोचते हैं कि हम उसको सिकाई करके ठीक कर देंगे या कुछ इस तरह का। वहाँ पे हमने ऐसे भी हमने पेशेंट देखे हैं जो हमारे पास आते हैं उनके दाहिने साइड में देखा है तो वहाँ पे जलन जैसा रहता है ऐसा। तो कुछ ऐसे हीलर भी हैं जो पत्थर वत्थर उसमें कपड़े में बांध के उसकी सिकाई करने के बताते हैं, स्किन तक जल जाती है लोगों का, लेकिन इस तरह के लास्ट स्टेज में पेशेंट हमारे पास आते हैं जहाँ पे हम भी लाचार होते हैं कुछ करने के लिए।
2: जाहिर सी बात है कि यहाँ तो फिर जागरूकता ही
3: जागरूकता इसीलिए हम सोच
2: रहे हैं क्योंकि गाँव के क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं आज भी अभी उतनी द्रुतगति से नहीं पहुंच पाई है और लोग थोड़ा बहुत विश्वास रखते हैं इन चीजों पर। लेकिन श्रोताओं से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो बनिस्बत कहीं और जाने के आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए ताकि सही रोग आपका डायग्नोस भी हो सके और
3: सही समय पर उपचार मिल सके ताकि हम इन सब इसके दुष्परिणामों से बच सके।
2: डॉक्टर साहब, ये तो हो गया कि पथरी हो गई, कैंसर में कन्वर्ट हो गई, लेकिन कुछ कारण होंगे हमारे जैसे जीवन शैली है आज।
3: जी जी बिल्कुल।
2: जैसे आपने अभी कहा कि यहाँ पानी की जो समस्या है और जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हम यूज कर रहे हैं उपजाने में वो है, तो क्या हम लोग करें जिससे कि ये पथरी बने ही ना?
3: जी बिल्कुल।
2: क्या सावधानियां, स्वस्थ जीवन शैली क्या होनी चाहिए?
3: जी बिल्कुल। इसके लिए सबसे पहले है कि आदमी संयमित भोजन करे। किसी भी खाने में हरी पत्तेदार सब्जियों का ज्यादा मात्रा रहना चाहिए, फल फूल का ज्यादा मात्रा रहना चाहिए। वसा वाला खाना खाने से पथरी बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, दूषित पानी पीने से पथरी बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हम शुद्ध पानी पिए। पानी को अगर शुद्ध नहीं मिल रहा है तो कम से कम उबाल लें, उसको उबाल के छान लें, छानने के बाद उसको पिए। आजकल आरओ का भी प्रचलन है, आरओ अपने घर में या फिल्टर्ड वाटर भी हो उसको भी आप पी सकते हैं। पानी सबसे शुद्ध, अगर आपको नहीं कुछ मिल रहा है तो पानी को उबाल के उसको स्टोर कर लीजिए, कम से कम 24 घंटे तक उसको आप पी सकते हैं। दूसरा है कि खाने पीने की चीज़ें हम भी अपने को या जो भी आप सुन रहे हो कार्यक्रम को उनको हम ये भी कहना चाहते हैं कि जैविक खादों का यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन सब्जियों का उस पर ये पेस्टिसाइड्स वगैरह का जो भी है मात्रा है उसको ध्यान में रखते हुए, हमको फसल भी उपजाना है तो उसको ध्यान में रखते हुए कृषि वैज्ञानिकों से मिल के कौन सा ऐसा चीज़ होगा जिसके कारण से सब्जियाँ दूषित ना हो, फल फूल दूषित ना हो, तो ये सब चीज़ों से अगर हम प्रिकॉशन लेंगे, इनसे अगर हम अनुसरण करेंगे तो पीत थैली में पथरी बनने की संभावना कम रहेगी। दूसरा, हम अपने मोटापा को कंट्रोल करें। जनरली एक इसके लिए पहले सिनो एक्रोनिमस चलता था कि 4F लिखा जाता है, फैटी 40 फर्टाइल फीमेल, ऐसे लोगों को ज़्यादा जो ज़्यादा चर्बीदार हों 40 साल के बाद की संभावना होती है और जनरली ये औरतों में या फीमेल्स में ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा अब तो पहले ये इसलिए था कि इतना हमें दूषित खाना नहीं मिलता था, आजकल तो खाने के दूषित इससे पानी से और खाने से ज़्यादा ये फैल रहा है, तो अब मेल फीमेल रेशियो काफ़ी वो अंतर कम हो गया है। मेल में भी काफी पित्त की थैली की बीमारियां देखी जा रही हैं, कैंसर काफी देखे जा रहे हैं।
2: डॉक्टर साहब, अब लौटते हैं पुराने विषय पर। जैसे पथरी है,

0: के सामने कलेक्ट किया जाता है, एक मोटी नलकी में आती है, उसी नलकी से पित्त की थैली जुड़ी होती है, वही नीचे आके आंतों में खुलती है। तो पित्त जो कहीं भी इस रास्ते में पथरी बन सकती है, लीवर में भी बन सकती है जहाँ पित्त की छोटी नलिकाएं हैं, ये जो मोटी नलकी है जिसको सीबीडी कहा जाता है उसमें भी पथरी बन सकती है और पित्त की थैली में बन सकती है। तो अगर पित्त की थैली में पथरी बनती है तो इसको हम लोग केवल पित्त की थैली तक ही सीमित है पथरी, तो हम लोग दो तरीके से, या तो ओपन कोलेसिस्टेक्टमी मतलब चीरा लगा के हम लोग पित्त की थैली को निकाल लेते हैं, या हम लोग दूरबीन विधि से जो जिसको गोल्ड स्टैंड, दूरबीन विधि को इसलिए गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है कि इसमें चीरा नहीं लगाया जाता है, पेशेंट को ज्यादा दिन हॉस्पिटल में स्टे नहीं करना पड़ता है और पेशेंट अपना वर्क टू वर्क नेक्स्ट डे से ही शुरू कर सकता है। तो इसलिए जो पित्त की थैली का दूरबीन से ऑपरेशन है जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है, ये दो चीजें हैं जो पित्त की थैली में पथरी को ओपन मेथड एंड लैप्रोस्कोपिक मेथड। जो पित्त की नलकी में पथरी है उसको भी आप ओपन मेथड से कर सकते हैं, चीरा लगा के निकाल सकते हैं, लैप्रोस्कोपिक भी कर सकते हैं। ईआरसीपी एक विधि होती है, इंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड पैनक्रियाटोग्राफी होती है, उसमें हम मुंह के अंदर से दूरबीन डाल के पित्त की नलकी में जाते हैं और वहां से पित्त की थैली नलकी की जो पथरी है उसको रिट्रीव कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो इसको ईआरसीपी कहा जाता है। तो ये तीन चार मेथड हैं जिसके कारण से जिस तरीके से हम पित्त की थैली का इलाज, पथरी का ऑपरेशन करके इलाज करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, हम ये कह सकते हैं कि जो पथरी है पित्ताशय की,
0: जी जी,
1: अगर किसी को हुई भी है तो बहुत परेशान होने की
0: बहुत परेशान होने की जरूरत,
1: इलाज बहुत आसान हो गया है।
0: प्राइमरी स्टेज में इलाज कराइए, कोई आपको कभी भी लैप्रोस्कोपिक मेथड से मुश्किल से 15 से 20 मिनट, आधे घंटे का सर्जरी है वो, आप सुबह आए शाम तक बिल्कुल फिट होकर अगले दिन घर जा सकते हैं।
1: बहुत आसान सी जिंदगी है, अगर बाय द वे ऑपरेशन करना भी पड़ा तो कोई बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। तो बस हम श्रोताओं से उम्मीद करेंगे कि डॉक्टर साहब ने जो सावधानियां बताई हैं वो बरतें, अगर कोई समस्या होती है तो इधर उधर जाने के बजाय किसी डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ भैया, जानकारी सुनने को मिला पित्ताशय की पथरी में कैंसर की संभावना, डॉक्टर संतोष कुमार कुशवाहा से बतकही करते रहें मनीष, उम्मीद बा कि यह जानकारी से पंच भाई पूरा लाभ उठाई हैं।
3: बिल्कुल,
2: और आज के दिन से भैया शुरुआत हो रहा बा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का।
3: हाँ भैया, हाँ हाँ भैया, जौन एक उद्देश्य बा और अब की जौन 2026 में एक थीम बा वो ये बा कि सड़क सुरक्षा नायक बने, एक उद्देश्य बा कि सही चलें, साइकिल या पैदल चले वालन के भी लोगन के इशारा बा कि भैया वो सुरक्षित चलें, दूसरे के भी मना आराम से यातायात सुचारू रूप से चले।
2: भैया यही के साथ अपने चलने का जून हो गए, चलल जाए,
3: पंचो जय हिंद।
4: आप सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। शाम के 6 बजे को हैं, कुछ ही देर में आप हमारे केंद्र से क्रमशः भोजपुरी और हिंदी में क्षेत्रीय समाचार सुनेंगे।

0: संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ
2: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ है हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हमें कि कुछ महीना के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़ल दुई गो खास आयोजन में शामिल भइल उनके खातिर सौभाग्य का बाती हो। वहाँ के आज एगो राष्ट्रीय दैनिक में लिखल लेख में बतौनी कि पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन का 75 साल पूरा भइले के उपलक्ष्य में सोमवार के वहाँ के गुजरात जाय। एगो रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई

0: इल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मानित करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के लेख के अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर साझा कैले हमें। श्री योगी कहले हमें कि सोमनाथ खाली एगो मंदिर नहीं बल्कि हमनी के सभ्यता का अटूट संकल्प हो। प्रदेश सरकार राज्यभर में स्थापित सज्जो स्मार्ट मीटरन के पोस्टपेड मोड में संचालित कैले के आदेश जारी कर दिले हो। एगो रिपोर्ट।
2: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कल बताया कि RDSS योजना के तहत स्थापित सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड सिस्टम में परिवर्तित किया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को बिजली की खपत के बाद बिल प्राप्त होंगे। मई 2026 में खपत हुई बिजली का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के तहत जारी किया जाएगा। यह नई व्यवस्था पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल और पश्चिमांचल बिजली वितरण निगमों के साथ साथ KESCO कानपुर में भी लागू की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। आकाशवाणी लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रेम चंद्र गुप्ता।
1: स्मार्ट मीटर आ बिजली बिल से जुड़ल शिकायतिन के समाधान बदे 15 मई से 30 जून 2026 ले प्रदेश भर में कैंपो लगावल जाए। ऊर्जा मंत्री आज लखनऊ में बतौलें कि अधिशासी अभियंता आ उपखंड अधिकारी कार्यालयन पर एह विशेष शिकायत निस्तारण कैंप का आयोजन हुई। सतही हर कार्यालय में विशेष हेल्प डेस्क बनावल जाई, जहां बिल संशोधन आ तकनीकी शिकायतन का ओझुकवें निस्तारण कैल जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत 6वां युवा संगम का आयोजन कर रहा हो। एकर उद्देश्य कई गो राज्यन आ केंद्र शासित प्रदेशन के नौजवानन में सांस्कृतिक एकीकरण के बढ़ावा दिहल आ लोगिन के बीचे संपर्क के मजबूत बनावल हो। एकरे तहत देश के कई हिस्सन में नौजवान प्रतिभागी जीवन विकास, संस्कृति विरासत, शिक्षा पर्यटन, नवाचार आ श्रेष्ठ कार्य प्रणालियन के कई गो पहलुअन को अनुभव करे बदे सहयोगी राज्यन आ केंद्र शासित प्रदेशन को दौरा कर रहल हवें। आकाशवाणी राष्ट्र के प्रति अपन विशिष्ट सेवा के 90 साल के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन कैलस। प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी आ आकाशवाणी का महानिदेशक राजीव कुमार जैन आकाशवाणी भवन से एह मैराथन के रवाना कैलें। ए मौका पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी कहने कि मैराथन के जरिया से फिटनेस का संदेशा जनता ले पहुंचावल जा रहा हो।
3: हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी का महानिदेशक राजीव कुमार जैन बतौलें कि ये आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के तौर पर आकाशवाणी की ओर से देश के सेवा में कैल गैल योगदान के दर्शावेला।
4: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक इस पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
5: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: मौसम विभाग आज प्रदेश के पूर्वी या पश्चिमी जिलन में कहीं कहीं बरखा आ गरज चमक के साथ बौछार पड़ने का संभावना जतौले हो। विभाग के मुताबिक पूर्वी जिलन में बिहनहू यह स्थिति रही। ए बीचे मौसम विभाग की ओर से प्रदेश भर में आज कहीं कहीं, वहीं पूर्वी जिलन में बिहने कहीं कहीं बिजली गिरले आ तेज झोंकेदार बेयार चलने का येलो अलर्ट जारी कैल गैल बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में बताया कि वह पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। एक रिपोर्ट।
0: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मानित करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के लेख को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया है। श्री योगी ने कहा है कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। प्रदेश सरकार ने राज्य भर में स्थापित सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में संचालित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कल बताया कि RDSS योजना के तहत स्थापित सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड सिस्टम में परिवर्तित किया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को बिजली की खपत के बाद बिल प्राप्त होंगे। मई 2026 में खपत हुई बिजली का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के तहत जारी किया जाएगा। यह नई व्यवस्था पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल और पश्चिमांचल बिजली वितरण निगमों के साथ साथ KESCO कानपुर में भी लागू की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। आकाशवाणी लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रेम चंद्र गुप्ता।
1: स्मार्ट मीटर और बिजली बिलों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए 15 मई से 30 जून 2026 तक प्रदेश भर में कैंप भी लगाए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री ने आज लखनऊ में बताया कि अधिशासी अभियंता एवं उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर इन विशेष शिकायत निस्तारण कैंप के आयोजन होंगे। साथ ही प्रत्येक कार्यालय में विशेष हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे, जहां बिल संशोधन और तकनीकी शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत छठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इसके तहत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आकाशवाणी भवन से इस मैराथन को रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
3: हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि यह आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
4: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक इस पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
5: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक पूर्वी जिलों में कल भी यही स्थिति रहेगी। इस बीच मौसम विभाग द्वारा प्रदेश भर में आज कहीं कहीं जबकि पूर्वी जिलों में कल भी कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
4: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
3: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: पंचों जय जवान जय किसान। हाँ भैया, नारा लागल और अपन बैठकी शुरू भइल। भैया हो किसान भाई के जौने मेहनत के उत्पादन होला, अगर ओकर ढंग से भैया ग्रेडिंग हो जाए तो उनके उत्पादन के हिसाब से भैया बाजार में ओकर मूल्य भैया बिना मोल भाव के समुचित भैया वर्गीकरण के हिसाब से मिलेला और ओकर चिन्हित हो जाला भैया कि एकर क्वालिटी का बा, एकर उपज के आकार प्रकार का बा, उससे उनके पूरहर भैया लाभ होला चाहे उनका उत्पाद कौन हो।
6: भैया सही एकदम कहला, कोनो भी चीज़ बा जैसे मान ला कि बाजार में भैया अगर टमाटर खरीदे जात बा तो जौन तनी बढ़हन बा एकदम साफ सुथरा बा उ जौन बा महंगा बिके।
5: बिल्कुल।
6: जौन तनी छोटहन बा ओकर रेट कम लगेला, जो मध्यम आकार का बा ओकर रेट दूसर रहेला। तो ये तरह से जौन भी उत्पाद बा अगर ओकर ग्रेडिंग कर दिया जाए तो हमेशा जौन बा लाभकारी हो।
5: फल में भी बा भैया।
6: हाँ भैया, वही के हिसाब से ओकर रेट लगेगा।
5: बिल्कुल। हाँ
6: भाई, एक चीज छाटे के पड़ेगा और एक चीज जोन बस छाटल बा तो वहाँ छटले के जरूरत नहीं बा।
5: और जोन देखले में सुंदर लागी भैया ओके खरीदार भी ढंग के रेट देलन।
6: भैया केहू भी आदमी अगर बाजार में सामान खरीदता है तो भैया ये जरूर कहला भाई देखा महंगा तो देहलस।
5: हाँ
6: ना, लेकिन सामान एकदम एक नंबर, एक नंबर का बा। तो ग्रेडिंग एक वजह से जरूरी बा। एक चीज भैया और बा कि अपने यहाँ अगर पूर्वांचल का बात कर जाए तो गन्ना के खेती मुख्य नगदी फसल के रूप में कई जा रहा है।
5: बिल्कुल।
6: पंच भाई उपाय भी करने लगे भाई गन्ना से बढ़िया उत्पादन मिले, लेकिन कई बार होखेला का कि कई बार कोनो कीड़ा का प्रकोप हो गया तो काफ़ी नुकसान उठावे के पड़ेला, उत्पादन कम हो जाला। गन्ना के फसल में कौन कौन मुख्य कीड़ा लग सकेले और उनका नियंत्रण कैसे कैल जा सकेला, आज यही विषय पर अपन किसान भाई जानकारी सुने डॉक्टर विनय कुमार मिश्र से।
7: गन्ने की फसल को पूरे वर्ष भर नुकसान पहुँचाता है। जब आप बुआई करते हैं तो जमने वाली आंखों को तथा आपके गन्ने के सेट को खाके आपके गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाता है। एक दीमक अपने जीवन काल में 2000 अंडे देती है जो सफ़ेद रंग की किडनी के आकार का होता है। अंडा काल 30 से 60 दिन, शिशुओं की मल्टिंग त्वचा विमोचन और 8 से 9 बार होने के उपरांत एक वयस्क दीमक बनती है जो 12 महीने तक आपके गन्ने को जो है नुकसान पहुंचाती है। यह 4 से 6 फीट तक जमीन की गहराई में होता है। इस कीट के नियंत्रण हेतु एक दवा फोरेटेंजी थी वह जो है प्रतिबंधित हो गई है, तो हम जो है डालेंगे क्या फिप्रोनिल 0.3% का 20 kg प्रति हेक्टेयर। इसे आप किसी रासायनिक खाद में नहीं मिलाएंगे, इन टुकड़ों के ऊपर डाल के आप ढकाई कर देंगे तो इस कीट का नियंत्रण हो जाएगा। क्लोरोपायरीफास 20% इसी का होगा तो 5 लीटर, 50% इसी का होगा तो 2 लीटर, या इमिडा क्लोरोपिट 400 मिलीलीटर से 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर 1875 लीटर पानी में घोल के हजारे की सहायता से इन टुकड़ों के ऊपर डाल के ढकाई कर दिया जाए तो यह कीड़े आपके नियंत्रित हो जाएंगे। या यदि आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो आपके पास दो फफूंदी उपलब्ध है, मेटाराइजियम एनिशोपल्ली और बबेरिया बैशियाना। आप सड़ी हुई 100 किलोग्राम गोबर की खाद लेंगे या सड़ा हुआ कंपोस्ट लेंगे या सड़ा हुआ चीनी मिल की मैली लेंगे, 2.5 किलो बबेरिया बैशियाना, 2.5 किलो मेटाराइजियम, आप 5 किलो लेके जो आपके बाऊ गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान द्वारा जो है निर्मित है, जैसे आप बालू में सीमेंट को मिलाते हैं वैसे मिला के एक छायादार स्थान पे ढेरी बना लेंगे। शाम के समय आप उसमें नमी देते रहेंगे, जैसे आप शाम को एक कटोरे में दूध गर्म करते हैं, एक निश्चित टेम्परेचर पर उसमें एक चम्मच दही डालते हैं, दूसरे दिन वह दही का रूप ले लेता। इसी प्रकार जो है पूरा कंपोस्ट, पूरा सड़ा हुआ गोबर का खाद या सड़ा हुआ फ्रेश मड आपके जो है जैव विनाश रसायन का रूप धारण कर लेगा। यदि इन टुकड़ों के ऊपर डाल के ढकाई कर दिया जाए तो जमीन में रहने वाले कीड़े नियंत्रित हो जाएंगे। यदि जमीन में रहने वाले कीड़ों में दीमक कीट का प्रकोप है तो आप कच्चे गोबर को खाद के रूप में प्रयोग न करें, ठूठो इत्यादि को न छोड़ें, पेड़ी की फसल न लें। दूसरा कीड़ा आपका जो है सफेद गिटार। यह कीड़ा आपके गन्ने की फसल को जब जून की पहली बरसात होती है तो इसके बिटिल काले काले रंग के होते हैं। नीम, शीशम, गुलमोहर की टहनियों पर इस कीट का प्रकोप भारी मात्रा में होता है, उनको जो है खा जाते हैं आपके गन्ने की फसल पर। यदि इस कीट का प्रकोप है तो दो लाइनों के बीच में आप नीम, शीशम, गुलमोहर की टहनियों को बिछा के इनके बैस कीट को जो है आप एकत्रित कर लेंगे और बाहर लाके एक छोटा सा गड्ढा खोल के आप जो है इसको डाल देंगे और उसमें थोड़ा सा कीटनाशक डाल देंगे। समन्वित कीट प्रबंध योजना के अंतर्गत इस कीट का जो है नियंत्रण बिना कीटनाशक डाले हो जाएगा। अपरिहार्य स्थिति में यदि इस कीट का प्रकोप ज्यादा है तो आप जो है दो लाइनों के बीच में, जैसे अभी आपने दीमक कीट के नियंत्रण है क्लोरोपायरीफास का प्रयोग किया, 2 लीटर क्लोरोपायरीफास 50% इसी का होगा या 20% इसी का होगा तो 5 लीटर, नाली में एक डंडा गाड़ लेंगे, उसमें त्रियक करके ऐसे बोतल को बांध के दो छोटे छोटे छेद कर देंगे, पीछे से आप पानी का बहाव कराएंगे जिससे जो है बूंद बूंद करके दवा नाली में गिरेगी, आपके पूरे खेत में फैल जाएगी, जिससे जो है यह कीड़ा आपका नियंत्रित हो जाएगा। गर्मी के महीने में प्रकोपित क्षेत्र में यदि हम गहरी जुताई करते हैं तो ऊपर की मिट्टी नीचे आती है और नीचे की मिट्टी ऊपर आती है, जिससे इसकी सूंड़ी सी आकार की होती है, चिड़ियाएं इन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं, जिससे जो है इस कीड़े का आपका नियंत्रण हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कीड़ा आपके गन्ने की फसल में बेधक कीटों का बहुत ही महत्व है। बेधक कीटों में आपका अंकुर बेधक जिसे आप पीका के नाम से जानते हैं, चोटी बेधक जिसे आप मतमुया के नाम से जानते हैं, जड़ बेधक, तना बेधक, गुरदासपुर बेधक, प्लाशी बेधक, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इन कीटों का प्रकोप अपने परिक्षेत्र में नहीं के बराबर है। तो हम आपको अंकुर बेधक कीट के विषय में बता दें। अंकुर बेधक कीट या आपके गन्ने की फसल को अप्रैल से जून तक नुकसान पहुंचाता है। जब आप इसकी तितली भूरे रंग की होती है, पत्तियों के निचले सतह पे अंडे देती, अंडे से सूढ़ी जमीन की सतह गिरती है और आपके पौधे में छेद करके जो मुख्य भगने बढ़ने वाला भाग है उसे खा जाती है। वर्ष में इसकी जो है 3 पीढ़ी पाई जाती है। आप जितने प्रभावित पौधे हैं नियंत्रण के तौर पे उन्हें खुरपी की सहायता से काट के खेत से बाहर कर दिया जाए, इससे आपका नियंत्रण हो जाता है। यदि 10 से 15 दिन के अंतराल पर बराबर हम अपने खेत की सिंचाई कर रहे हैं तो यह कीड़ा आपका नियंत्रित हो जाता है। या एक दवा कुराजन आई है जिसका जो है हम प्रयोग मई के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में करते हैं तो जो है पीका और मथुया कीड़े का नियंत्रण हो जाता है। हम पहले अपने खेत की सिंचाई करते हैं, सिंचाई करने के बाद जब पैर पकड़ने लगे तो हम एक खाली

0: टब लेते हैं, उसमें 150 मिलीलीटर दवा एक एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है, जो 400 लीटर पानी के साथ प्रयोग होना है, तो हम एक टब में 150 मिलीलीटर दवा गिरा के 29 लीटर पानी डाल के एक स्टॉक सोल्यूशन बना लेते हैं। हमारा स्प्रेयर 15 लीटर का आता है, 13 लीटर सादा पानी, 1 लीटर जो हमने स्टॉक सोल्यूशन बनाया है उसको डाल के नाजिल खोल के पौधों की जड़ों के पास जो है 29 बार चलते हैं, तो जो है हमारा एक एकड़ खेत की ड्रेंचिंग 406 लीटर पानी के साथ हो जाती है, जिससे पीका और मतमुया कीड़े का जो है नियंत्रण आपके गन्ने की फसल पर हो जाता है। या टाइकोकार्ड का प्रयोग करें, टाइकोकार्ड में जो है अंड परजीवी है, यदि हम एक कार्ड में 20,000 अंडे होते हैं, 2.5 से 3 कार्ड प्रति हेक्टेयर की दर से जून से अक्टूबर तक हर 15 दिन के अंतराल पर यदि इसका प्रत्यारोपण करें, तो जो है यह बेधक कीटों का अंडा परजीवी है, यह अंडे ही अंडों के भीतर अपने अंडे डालेगा, अंडे ही रूप में नष्ट हो जाएगा। दूसरा कीड़ा है हमारा चोटी बेधक, इस कीट को हम किसान भाई मतमुया के नाम से जानते हैं। इसकी तितली सफेद रंग की होती है, जो पत्तियों के निचले सतह पे अंडे देती, इन अंडों से सूली निकल के पौधे के ऊपर से खाते हुए नीचे की तरफ आती है। इसकी एक सूली एक ही पौधे में अपना पूरा जीवन चक्र तैयार कर लेती, जिससे जो है यह कीड़ा आपके गन्ने की फसल को काफी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। इसके प्रभावित पौधों की पहचान है, पत्तियों पर गोल गोल छर्रे जैसा निशान, बीज की पत्ती मुड़ी होती है और इसे खींचने पर आसानी से नहीं खींचती, जैसे पीका में जो है खींचने पर आसानी से खींच जाती है। तो यदि हम इसके नियंत्रण है, इसकी वर्ष में 5 पीढ़ी पाई जाती है, पहली पीढ़ी जो है मार्च से अप्रैल तक, दूसरी मई के द्वितीय सप्ताह से जून के द्वितीय सप्ताह तक, और जो सबसे अधिक नुकसानदेह है तीसरी पीढ़ी जून के तृतीय सप्ताह से अगस्त के प्रथम सप्ताह तक, ऐसे जो है इसकी वर्ष में 5 पीढ़ी पाई जाती है। तो कहीं कहीं इसकी 6 पीढ़ी पाई जाती है, लेकिन अपने यहाँ इसकी 5 पीढ़ी पाई जाती है। यदि हम प्रथम और द्वितीय पीढ़ी के अंड समूहों को एकत्रित करके मार्च से मई तक नष्ट करके कर दें, प्रथम और द्वितीय पीढ़ी के प्रभावित पौधों को कटवा लें, इससे जो है इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। जो किसान भाई कोराजन का प्रयोग मई के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में नहीं किए हैं, वह तृतीय पीढ़ी के नियंत्रण है जो है कोराजन ग्रुप का ही जो है ग्रेनुअल फार्म में फटेरा आता है, 22 से 23 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से नमी की अवस्था में किसी रासायनिक खाद में नहीं मिलाएंगे, इन टुकड़ों के ऊपर डाल देंगे, तो जो है तीसरी पीढ़ी का नियंत्रण हो जाएगा। आपके गन्ने की फसल को जो है या टाइकोकार्ड का प्रयोग करें जून से जुलाई तक, फिरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें, लाइव ट्रैप का प्रयोग करें, इससे जो है यह कीड़ा जो है आपका नियंत्रित हो जाएगा, जिससे आपके गन्ने की फसल को जो है इन कीटों से बचाया जा सकता है और इससे आपका उत्पादन अच्छा मिलेगा, जिससे आपका लाभ होगा।
1: हाँ भैया, देखा गन्ना में लगने वाले मुख्य कीट एवं उनका नियंत्रण जानकारी देते रहन डॉक्टर विनय कुमार मिश्र, इनके अपने ओर से धन्यवाद भी दिया जाए। और भैया देखा अपने बैठकी में जो अलग अलग भैया चीज के क्रम बा, तो अमरनाथ यादव के आवाज़ में एक निर्गुण लोकगीत सुना जा, फिर बैठकी आगे बढ़ी।

0: हाँ भैया, अमरनाथ यादव और उनका संगतिया लोग जौन बा गीत दोनों ही सुनौलें। उम्मीद बा कि अपन पंच भाइल उनका पूरा हर मन मनसाइन भइल होई।
1: हाँ
0: एक बार
1: भैया,
0: फिर अपने खेती बाड़ी को चलल जाए, एगो जानकारी अपन किसान भाई सुने। आम की रंगीन प्रजातियों की बागवानी और यह विषय पर डॉक्टर विनोद बहादुर सिंह से बतकही कह रहा हूँ। श्रीयुत श्री कृष्ण।
2: हम जब फलों की बात करते हैं तो फलों का राजा आम, उसका स्वादिष्ट मीठा स्वाद और उनसे मिलने वाला पोषण, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। आम की कौन सी प्रजातियां हैं, कौन सी नई प्रजातियां हैं, उनके क्या गुण हैं, उनके क्या लक्षण हैं, इन तमाम विषयों पर हमने बात की है कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती के डॉक्टर विनोद बहादुर सिंह जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है आकाशवाणी में। अभी बताएं कि फलों के राजा आम, इसकी कौन कौन सी नई प्रजातियां हैं जो आप बताना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को?
3: नमस्कार, मैं डॉक्टर वीवी सिंह, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र बंजरिया बस्ती। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बंजरिया के परिसर पे आम की 12 से 13 प्रजातियां, जो आजकल रंगीन प्रजाति पूसा से निकली हुई है, उस प्रजाति को यहां पे लगाया गया है, जिसमें अंबिका, पूसा अरुणिमा, टामी एटकिंस, सेंसेशन, पूसा सूर्या, अरुणिका, पूसा प्रतिभा, पूसा पीताम्बर, पूसा मनोहरी, पूसा लालिमा, पूसा श्रेष्ठ, पूसा दीपशिखा, इन प्रजातियों को लगाया गया है और इसकी मांग हमारे किसान भाई तथा प्रदेश तथा देश के विभिन्न भागों में ये जा रही हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे बगल के देश हैं, जैसे नेपाल या सिंगापुर के भी कुछ लोग ऐसे किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इन रंगीन प्रजातियों को हमारे इस केंद्र से ले जाते हैं। इन प्रजातियों की खास विशेषता ये होती है कि ये देखने में बहुत ही सुंदर, इतने अच्छे किस्म के फल होते हैं देखने में, तथा खाने में स्वाद भी बड़ा अच्छा होता है। तो मैं एक एक तरफ से इन लोगों का क्या वैरायटी वार क्या क्या विशेषता है, उसके गुण के बारे में आपको बताना चाहता हूँ।
2: डॉक्टर साहब, इनके जो शुरुआती लक्षण, जो देखने से आप कोई भी एक आमदनी जान सकता है कि इसका रंग रूप क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा।
3: आम कि इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता होती है, जैसा कि हम जानते हैं कि जब आम पकता है तब उसका रंग निखरता है, कि वो पहले तो हरा होता है लेकिन सिंदूरिया या लाल रंग पहले जैसे होता था। लेकिन इस प्रजाति की ऐसी विशेषता है कि यह वैरायटी हमारी, जैसे ही इसका आम को, जिसको हम टिकोरा बोलते हैं, छोटी ही अवस्था से ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये रंगीन ही होता है, और बड़े साइज में जाने के बाद बहुत ही रंगीला तथा बहुत ही सुंदर होता है।
2: यानी जो शुरुआती में आम, जो साधारण आम है, दूसरे आम की वैरायटी हरे रहते हैं, ये शुरू से ही रंगीन रहता है?
3: शुरू से ही ये रंगीन निकलता ही है, और जैसे बढ़ता जाता है उसी हिसाब से उसमें रंग भी निखरता रहता है, लेकिन शुरुआती दौर से ही रंगीन होता है। इसमें जैसे अंबिका हमारी जो वैरायटी है, इसकी विशेषता यह है कि यह नियमित फल देती है तथा देर से पकने वाली प्रजाति है, देर से थोड़ा पकती है। फल इसका अंडाकार होता है, गहरे लाल रंग का, पीले रंग का होता है। इसमें इसका जो गूदा होता है रेशायुक्त होता है, कठोर तथा पीले रंग का होता है, और इसका जो वजन होता है लगभग 250 से 350 ग्राम का होता है। दूसरी वैरायटी जो हमारी है उसको है पूसा अरुणिमा। इसकी विशेषता ये होती है हर साल फल आता है, और फल मध्यम लंबा तथा वजन जो इसका होता है वो 250 से लगभग 300 ग्राम इसका भी होता है। छिलका इसका बहुत ही आकर्षक और लाल रंग का होता है। जब हम इसकी रोपाई की बात करते हैं तो जितनी भी हमारी रंगीन वैरायटियां हैं वो लगभग 6x6 मीटर पे लगाई जाती हैं। इसके ये नहीं है कि हम, कुछ लोगों ने हमारे फार्म पे तो 5x5 मीटर पे ही लगाया गया,
2: यानी कतार से कतार की दूरी 6 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 6 मीटर।
3: दूसरी वैरायटी हमारी जो है वो है टामी एटकिंस। इसका फल कठोर व लंबे आकार का होता है, प्रत्येक वर्ष इसमें फल आते हैं, फल इसका भी गहरा लाल रंग का होता है। दूसरा चीज ये फंफूदी जो लगती है, प्रतिरोधी होती है उसके प्रति, और रेशा रहित, इसमें रेशा नहीं होता है। फल को काफी दिनों तक हम इसको संरक्षित रख सकते हैं, तथा इसमें शर्करा की जो शुगर की मात्रा होती है बहुत कम होती है, यानी शुगर के पेशेंट होते हैं इसको आम को, टामी एटकिंस को खा सकते हैं। चौथी वैरायटी हमारी जो सेंसेशन है, ये पौधे इसके काफी ओजस्वी छातानुमा होते हैं, तथा जो फल का आकार होता है वो अंडाकार होता है। इसका वजन थोड़ा ज़्यादा होता है, लगभग 450 ग्राम का। रेशा जो उसका फाइबर होता है वो हल्की सुगंध के साथ हल्का मीठा भी होता है। औसत उत्पादन काफ़ी अधिक तथा फल का जो रंग होता है ये भूरे रंग का होता है। उसके बाद जो हमारी पूसा सूर्या वैरायटी है, इसके जो मध्यम आकार के इसका वृक्ष होता है तथा फल मध्यम लंबा, वजन लगभग 260 से 290 ग्राम का, बाहरी छिलका आकर्षक तथा पीला लालिमा युक्त होता है। सघन बागवानी के लिए ये वैरायटी बहुत ही अच्छी होती है। और उसके बाद जो हमारी वैरायटी है वो है उसका अरुणिका, पूसा की वैरायटी ये भी है। इसके पौधे बौने व छातानुमा फैलाव के लिए होते हैं। इसका फल चिकना होता है, जैसे सेब टाइप का होता है, नारंगी पीले रंग का होता है। इसका थोड़ा सा वजन कम होता है, 190 से 200 ग्राम भर का होता है और मध्यम आकार का होता है। उसके बाद हमारी एक वैरायटी है पूसा प्रतिभा, ये गुच्छे में फल देती है। फल इसका मध्यम आकार का, बाहरी छिलका थोड़ा चमकीला होता है, गूदा का रंग जो है नारंगी। सघन बागवानी के लिए भी वैरायटी हमारी अच्छी है, 6x6 मीटर पर हम इसको लगा सकते हैं। इस वैरायटी की एक विशेषता यह है कि इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद हमारी वैरायटी है पूसा पीताम्बर, हमारे जो केंद्र पे लगी हुई है, इसमें प्रत्येक वर्ष फल आते हैं। इसका वजन लगभग 215 ग्राम होता है, लेकिन इसके फल का जो होता है वो आयताकार होता है, बाहरी छिलका आकर्षक एवं चमकीला। यह भी सघन बागवानी के लिए काफ़ी उपयुक्त वैरायटी है। अगर इसको किसान लोग लगाएंगे तो काफ़ी हमको पूसा पीताम्बर से इसको लाभ मिलेगा। उसके बाद हमारी वैरायटी है पूसा मनोहरी, यह भी वैरायटी हमारी प्रत्येक वर्ष फल देती है। फल का जो रंग है पीला और छिलका जो है उसका नारंगी गूदा होता है, और यह भी सघन बागवानी के लिए काफ़ी उपयुक्त है। 6x6 मीटर पे इसको लगाया जाता है। इसमें भी विटामिन सी, पूसा मनोहरी प्रजाति में भी विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद एक वैरायटी हमारे केंद्र पे लगी हुई है जिसका नाम है पूसा लालिमा, इसमें भी प्रत्येक वर्ष फल आता है। फल का वजन लगभग 200 से 250 ग्राम के बीच होता है, बाहरी छिलका चमकीला एवं लाल, गूदे का रंग इसका भी नारंगी, और ये भी सघन बागवानी के लिए, चूंकि सभी हमारी रंगीन जो वैरायटियां हैं वो 6x6 मीटर पे ही लगाई जाती हैं। इसकी विशेषता जो है कि इसमें भी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद हमारे केंद्र पे जो वैरायटी है वो पूसा श्रेष्ठ है, प्रत्येक वर्ष इसमें फल लगता है और फल मध्यम आकार के, बाहरी छिलका लालिमायुक्त, गूदे का रंग नारंगी, प्रचुर मात्रा में इसमें भी विटामिन सी पाई जाती है। इसको भी 6x6 मीटर पे लगाया जाता है। उसके बाद हमारी एक वैरायटी है भी, लेटेस्ट वैरायटी जो पूसा ने निकाली है, उस वैरायटी का नाम है पूसा दीपशिखा, ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा। इसमें भी प्रत्येक वर्ष फलत होती है, फल नारंगी पीले गूदे के साथ, छिलका इसका चमकीला लाल, फल का आकार आयताकार, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी और सघन बागवानी के लिए काफ़ी उपयुक्त है। और अभी हम लोग जो रंगीन वैरायटियों के अलावा भी थाईलैंड सिंगापुर से कुछ हमारा केंद्र नई नई वैरायटियों को वहां से मंगा करके इस साल हम यह प्रयास कर रहे हैं कि वहां से अच्छी वैरायटी मंगा करके अपने केंद्र पे मातृ पौधशाला विकसित करें तथा जिससे हम अपने देश तथा अपने प्रदेश तथा जनपदों में किसान भाइयों को इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दे सकें।
2: डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो तमाम प्रजातियां आपने बताई हैं, क्या कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ बस्ती पर आपके यहाँ बिक्री के लिए उपलब्ध हैं?
3: जी, इस समय हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे ये जो सारी वैरायटियाँ जो मैं रंगीन बताया हूँ, एक हमारे बंजरिया फार्म पे बिक्री के लिए विगत 2 वर्षों से किसान भाई इसको ले जा रहे हैं, और इस साल भी हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री के लिए हम पौधे तैयार कर सकें। मेरा प्रयास है कि 5 से 10 हज़ार पौधे हम इस साल भी किसानों के लिए उपलब्ध कराएंगे।
2: तो मूल क्या रहता है?
3: मूल इसका 122 रुपये अभी हमारा निर्धारित, हमारे जो विश्वविद्यालय की रंगीन वैरायटी का जो दाम है वो 57 रुपये, और लेकिन इस साल हम लोग चूँकि हमारे बगल में इंडो इजराइल का केंद्र है तो वहाँ पर 122 रुपये इसका रेट है, तो हम लोग संभवतः यही हमारा 122 का ही रेट रहेगा और 122 में ही जाएगा।
2: तो किसान भाई, आपने देखा कि किस तरह से रंगीन वैरायटी के जो आम की विभिन्न प्रजातियां हैं उनके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने विस्तार से इन वैरायटियों के बारे में बताया।
0: हाँ भैया, ये जानकारी तो हो गई, यही के साथ ही अपने चल ले का जून भी भेल चला जाए।
1: पंचो जय जवान जय किसान।

लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना। सुनील चौहान बताते हैं कि इनकी पत्नी गीतांजलि देवी दिनांक 30/3/2026 से लापता हैं। इनके बारे में अगर किसी सज्जन को कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करें। ग्राम मनियर, स्प्रिंगर स्कूल, पोस्ट मनियर, थाना मनियर, जनपद बलिया। या आप इस मोबाइल नंबर पर भी सूचित कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9044458460। सिद्धनाथ सिंह बताते हैं कि इनके पुत्र सोनू सिंह दिनांक 2/4/2026 से लापता हैं। इनके बारे में अगर किसी सज्जन को कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करें। ग्राम पिपराकला, पोस्ट पिपराकला, थाना नरही, जिला बलिया। या आप इस मोबाइल नंबर पर भी सूचित कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9120733560। लालजी पासवान बताते हैं कि इनकी पुत्री कुमारी सीटी दिनांक 30/3/2025 दिन रविवार को दिन के लगभग 2:30 से लापता हैं। इनके बारे में अगर किसी सज्जन को कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करें। ग्राम व पोस्ट गोनिया छपरा, थाना बैरिया, जिला बलिया। या आप इस मोबाइल नंबर पर भी सूचित कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7459985161। विजेंद्र राजभर बताते हैं कि इनकी पुत्री रितु कुमारी राजभर दिनांक 30/3/2026 से लापता हैं। इनके बारे में अगर किसी सज्जन को कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करें। ग्राम गायघाट, पोस्ट गायघाट, बलिया। या आप इस मोबाइल नंबर पर भी सूचित कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9792558120। चांद गोविंद राम बताते हैं कि इनके पुत्र जितेंद्र राम दिनांक 20/3/2026 दिन शुक्रवार से लापता हैं। इनके बारे में अगर किसी सज्जन को कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करें। ग्राम व पोस्ट बड़गांव, जिला बलिया। या आप इस मोबाइल नंबर पर भी सूचित कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7800406321। खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुए। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में लीजिए सुनिए श्री चंद्रभान व साथी को।

लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में अभी आप सुन रहे थे चंद्रभान व साथी को। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। भोजपुरी बोली के कार्यक्रम देश हमार में लीजिए सुनिए नंद जी नंदा से काव्य पाठ।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: बागी बलिया है बगावत के धरती, बागी बलिया है बगावत के धरती, बाजल बिगुल जब आजादी निवरती, मेरठ में मंगल भी झंडा फहरावे, क्रांति वाला गीत झुमझुम के गावे, मेरठ में मंगल भी झंडा फहरावे, क्रांति वाला गीत झुमझुम के गावे, चित्तू पांडे रहले ऐसन फौलादी, 14 दिन पहले ही लिहले आजादी, बलिया के बनके कलेक्टर रणबंका, बलिया के बनके कलेक्टर रणबंका, यही से बलिया के बाजल बढ़ंका, साजे जगन्नाथ दीपन में टोली, बोले बंदे मातरम वाली बोली, बोले बंदे मातरम वाली बोली, क्रांति यहाँ छेड़ले क्रांतिकारी, बैकुंठ बलिया त्रिभुवन में पावन, जहाँ लिहली अवतार हे धनुहाधारी, जगत के नियंता अयोध्या बिहारी, जगत के नियंता अयोध्या बिहारी। कुंवर सिंह एक महान क्रांतिकारी भैलवान, ओकर एक छंद कि कुंवर सिंह के पंचरूखा भवानी, लोरी के दुर्गा ब्रह्माइन ब्रह्मानी, कुंवर सिंह के पंचरूखा भवानी, लोरी के दुर्गा ब्रह्माइन ब्रह्मानी, गौरा हुए वीर लोरी के धरती, सारा जमाना जकर गावे कीर्ति, सारा जमाना जकर गावे कीर्ति, श्री राम देव जी प्रजापत बहादुर, जमानी लुटौले जी जननी के खातिर, आशीष देवी के कुंवर सिंह पाके, आशीष देवी के कुंवर सिंह पाके, गोरवन के छक्का छुड़ौलन लड़ाके, कीनारम बाबा रहले अवघरदानी, कुछ चित बड़ा गाँव बीतल जवानी, उचेढ़ा की दुर्गा करी रखवारी, बैकुंठ बलिया ए त्रिभुवन में पावन, जहाँ लिहली अवतार हे धनुहाधारी, जगत के नियंता अयोध्या बिहारी, जगत के नियंता अयोध्या बिहारी। अब कुछ धार्मिक बात उसे संबंधित कहता नहीं कि परसियाँ सीताकुंड से सीता निकली, परसियाँ सीताकुंड से सीता निकली, पराशर मुनि भी इहें जाके बसली, मछोदर के नैहर रहल बांस थाना, मछोदर के नैहर रहल बांस थाना, पराशर मुनि भैल जई पर दीवाना, मुनि व्यास जन्मे महाब्रह्म ज्ञानी, जिह्वा पर बैठी मसारद सयानी, पुराण लिखे 18 मुनिराई, नारे पुरेन संग जंगल में जाई, रुक्मिणी जी विश्राम कूड़ी डी कैली, देवों की नगरी देवरिया से ऐली, अर्धांगिनी रुक्मिणी कृष्ण प्यारी, बैकुंठ बलिया ए त्रिभुवन में पावन, जहाँ लिहली अवतार हे धनुहाधारी, जगत के नियंता अयोध्या बिहारी, जगत के नियंता अयोध्या बिहारी। काशी के उपखंड, काशी के उपखंड बलिया बरदानी, महाराजा बल की सुघर राजधानी, महाराजा बल की सुघर राजधानी, वाल्मीकि जी डाकुन के नामी सरगना, लूटे खसूटे पराया धन अपना, सदगुरु कृपा से वाल्मीकि मुनि ध्यानी, जपे नाम उल्टा भये ब्रह्म ज्ञानी, अब विष्णु के भृगु उछलिला त मरले, देखी नतीजा की संगम परैले, रमणीय गंगा म पावन किनारे, तपस्या में डुबले हम मुनिवर हमारे, भैल मोक्ष उनकर सदा सुखकारी, बैकुंठ बलिया ए त्रिभुवन में पावन, जहाँ लिहली अवतार हे धनुहाधारी, जगत के नियंता अयोध्या बिहारी, जगत के नियंता अयोध्या बिहारी। अब आखिरी छंद हम त्रैलोक्य की सिद्ध भूमि बलिया के आखिरी छंद निवेदित करतानी कि धरा धाम बलिया में बम बम सी भोला, भांगे धतूरा से भरल बझोला, बिछुअन के कुंडल अमुंडन के माला, बिछुअन के कुंडल अमुंडन के माला, हलाहल पिए वाला है देखी काला, त्रिशूल पर काशी बलियों बसावें, नारद जी घूम घूम के बीड़ा बजावें, देखने वास्ते अइल बलियां विधाता, संपूर्ण दुनिया के जे जन्मदाता, अभिर्गु के दर दर जी गुरु भक्त चेला, दर दर से मशहूर ददरी के मेला, संहार करता हमी त्रिपुरारी, वैकुंठ बलियां त्रिभुवन में पावन, जहाँ लिहली अवतार हे धनुहाधारी, जगत के नियंता अयोध्या बिहारी, जगत के नियंता अयोध्या बिहारी, जगत के नियंता अयोध्या बिहारी। अब यही शब्दन के साथ ये कविता के समापन करतनी। एक दो छंद औरी एकता के नाम पर हम रखे चाहतनी कि बानाई के सरिया क्रांतिकारी अन के रंग, बानाई के सरिया क्रांतिकारी अन के रंग, त्याग तपस्या व भारतीयता के शान है, बानाई के सरिया क्रांतिकारी अन के रंग, त्याग तपस्याई भारतीयता के शान है, और सफेद रंग शांति सद्भावना भरल, विश्व बंधुत्व के अगल ग पहचान है, सफेद रंग शांति सद्भावना भरल, विश्व बंधुत्व के अलग पहचान है, हरियर रंग माई के परिधान हुए, हरियर रंग माई के परिधान हुए, बनऊ पवन गुलसन हिंदुस्तान आ, चौबीस तिलियन के चक्र कहेला बढ़ तू आगे, चौबीस तिलियन के चक्र कहेला बढ़ तू आगे, एकता अखंडता के दंड दरवान है, एकता अखंडता के दंड दरवान है। दूसरा छंदबा किशूरमा सपूत अनगिनत क्रांतिकारी लाल, आर पार जे लड़ल नजीर के चलन है, सूरमा सपूत अनगिनत क्रांतिकारी लाल, आर पार जे लड़ल नजीर के चलन है, आ जौहर दिखौली पीठ पर लरिका के बांधी, जौहर दिखौली पीठ पर लरिका के बांध, सिंह

स्वर्ग से महान कर्म वीर के वतन है, आँच न आइल कबो माई की ममता पे, आँच न आइल कबो माई की ममता पे, ऐसन क्रांति वीर के फकीर के चमन है, ऐसन क्रांति वीर के फकीर के चमन है। आई सभे एगो छंद और खिदमत में रखे चाहतनी कि क्रांति के संदेश लेके आ गईल वक्त आज, क्रांति के संदेश लेके आ गईल वक्त आज, जागु जागु रे जवानु लेके अंगड़ाई के, बागी बलिया के देख क्रांति के ज्वाला बा जागल, बागी बलिया से देख क्रांति के ज्वाला।

पानी चाल देख नौजवानी लाल रुधिर के भाल पर चंदन लगाई के याद कर बलिदान वीरन के बार बार याद कर बलिदान वीरन के बार बार आर पार वाला जंग छेड़ू वीरताई के आर पार वाला।

0: ताई के अब एगो छंद और आप सबके खिदमत में समर्पित बा कि घर द्वार गांव गली गुलजार कैले मुल्क, घर द्वार गांव गली गुलजार कैले मुल्क, खून से सिंचल ये चमन के नमन बा, आ लोहे के चन्ना चबवा दिए फिरंगियन के, लोहे के चन्ना चबवा दिए फिरंगियन के, वीर सपुतन वो रतन के नमन बा, प्राण ने बछावर कैले उ भारती के पुत, प्राण ने बछावर कैले उ भारती के पुत, भुजबल के नमन प्रण के नमन बा, आ गुलामी के तोड़ी आजादी के अपनौले लाल, बागी बलिया के ये मिशन के नमन बा, बागी बलिया के ये मिशन के नमन बा।
1: भोजपुरी बोली के कार्यक्रम देश हमार में अभी आप सुन रहे थे नंद जी नंदा से काव्य पाठ। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रादेशिक संगीत में लीजिए सुनिए पंजाबी लोकगीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: प्रादेशिक संगीत में भी आप सुन रहे थे पंजाबी लोकगीत, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: लखनऊ केंद्र है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक सहित विभिन्न सांसदों और मंत्रियों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की। सामाजिक आर्थिक आकलन के लिए सबकी भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश में कल और 10 मई को होने वाली प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। परीक्षा केंद्र एआई कैमरों से लैस, 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने 10 मई के बाद फिर से बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम

0: चरण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है और इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। वहीं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने भी आज अपना जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरा। उन्होंने लोगों से जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या भौतिक रूप से भरकर जल्द से जल्द जनगणना प्रक्रिया पूरी करने की अपील की।
1: देखिए, जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या फिजिकल भर करके जनगणना की प्रक्रिया को शीघ्र शीघ्र पूरा करें। इससे जनगणना पूरी होकर के और आगे जो संवैधानिक कार्य हो पूरे हो सके। आज जनगणना प्रपत्र हमने ऑनलाइन भर दिया।
0: इसी क्रम में डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल, पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी आज स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की। लखनऊ स्थित यूनिसेफ कार्यालय में आज जनगणना संचालन क्षेत्रीय निदेशालय उत्तर प्रदेश ने यूनिसेफ के सहयोग से जनगणना 2027 स्वगणना पर सेंसस मैटर्स फॉर चिल्ड्रन विषय पर जागरूकता और क्षमता विकास सत्र आयोजित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि स्वगणना जनगणना 2027 का एक प्रमुख नवाचार है। यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कल और 10 मई को किया जाएगा। परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित होगी, जिसमें कुल 4,64,605 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने आज 17 जनपदों के 319 परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को AI आधारित CCTV कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। प्रदेश में संचालित स्मार्ट प्री पेड मीटर व्यवस्था को समाप्त कर सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्ट पेड मोड में संचालित करने के संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बताया कि RDSS योजना के अंतर्गत स्थापित सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्ट पेड मोड में परिवर्तित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब मई 2026 की विद्युत खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिल SMS और व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहां एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2024 के आंकड़ों ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को दर्शाया है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय क्राइम रेट 252.3 के सापेक्ष उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट 180.2 रहा। कुल अपराधों में उत्तर प्रदेश का देश में 18वां स्थान है। एक रिपोर्ट।
3: NCRB रिपोर्ट में हत्या के मामले में देश में यूपी का स्थान 29वां है, जबकि हत्या के प्रयास के मामलों में ये 26वें स्थान पर है। वहीं फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में राज्य पूरे देश में सबसे नीचे 36वें नंबर पर है। दुष्कर्म के मामले में यूपी देश में 24वें स्थान पर है, जो राज्य में बेहतर हुई कानून व्यवस्था को बताता है। जेलों में क्षमता और अनुशासन के मामले में भी यूपी का प्रशासन अन्य राज्यों से बेहतर है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा कि ये सुधार सतत और सुविचारित प्रयासों का प्रतिफल है। पिछले 9 वर्षों में आधुनिक पुलिस स्टेशन, सतर्क एंटी रोमियो स्क्वाड, हर थाने पर समर्पित महिला हेल्प डेस्क, कमजोर वर्गों को त्वरित न्याय दिलाने वाले फास्ट ट्रैक कोर्ट और संगठित अपराधों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। बुलंदशहर में आज नेशनल हाईवे 34 पर तेज

0: रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार पति पत्नी और उनके 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने कई जगहों पर तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी 2 दिनों में मौसम साफ रहेगा। वहीं 10 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 मई से हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा।
1: 9 मई को जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ क्षेत्रीय वर्षा होने की संभावना बहुत लाइटली तो छींटाकशी हो सकता है, बाकी उसके बाद मौसम साफ है। फिर से जैसा कि नया पश्चिमी विक्षोभ 10 से 11 तारीख से एक्टिवेट हो रहा है, जिसके वजह से 12 तारीख से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल पार्ट में फिर से धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ेगी, हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा।
0: आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। एक रिपोर्ट।
2: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
3: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
2: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
4: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
5: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
2: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकरवाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित विभिन्न सांसदों और मंत्रियों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की। सामाजिक आर्थिक आकलन के लिए सबकी भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश में कल और 10 मई को होने वाली प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। परीक्षा केंद्र AI कैमरों से लैस, 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने 10 मई के बाद फिर से बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स एवं 100.1 एफएम पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्मी कव्वालियां। सबसे पहले लीजिए सुनिए फिल्म बजरंगी भाईजान से अदनान सामी को।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details, log on to www.ddindia.com।
5: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत। स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: संध्या से पहले आप सुन रहे थे फिल्मी कव्वालियों का कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारा हिंदी कार्यक्रम।
4: गांव तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।

0: सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details log on to www.ddindia.com।

वर्षा ऋतु से संबंधित एक घनाक्षरी छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऐसी ऋतु आई मन भावनी सुहानी, और छोर में मयूर निज पंख तोलने लगे। तो ऐसी ऋतु आई मन भावनी सुहानी, और छोर में मयूर निज पंख तोलने लगे। और नदियों की लहरों का मौन संदेश पढ़, व्याकुल किनारों के भी मन डोलने लगे। ऐसा जादू टोना किया प्रकृति नटी ने मानो, तो ऐसा जादू टोना किया प्रकृति नटी ने। कुछ पीपर के पात पात रस घोलने लगे। और हुए काम कातर रहे जो निष्काम, कई जोगड़े बेचारे राम राम बोलने लगे। हुए काम कातर रहे जो निष्काम, कई जोगड़े बेचारे राम राम बोलने लगे। एक गजल नुमा गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, दूसरा गीत है। तो किस तरह मजबूर होता जा रहा है आदमी,

से एक तीसरी रचना एक पारंपरिक धरातल पर लिखा हुआ गीत है, गहरी झील नी

गहरी झील नियत है अपनी, उड़ना नभ में है लाचारी। गीत का अंतिम बंद कि रा

चांदनी सबको अच्छी लगती है। हर चांदनी के आने से जीव जंतु जितने जन प्राणी है मनुष्य सब प्रसन्न हो जाते हैं। दो तीन छंद चांदनी पर सुनाना चाहूँगा कि बादलों के पार द्वार मृग रथ पै सवार, बादलों के पार द्वार मृग रथ पै सवार, अब वेदना का वेद ही पढ़ा रही है चांदनी। तो बादलों के पार द्वार मृग रथ पै सवार, वेदना का वेद ही बढ़ा चढ़ा रही है चांदनी। और धीरे धीरे नभ से उतरती है धरती पे, और धीरे धीरे नभ से उतरती है धरती पे, अंग अंग गहने गढ़ा रही है चांदनी। तो पर्वतों

झूलती है चांदनी आग सी लगाती है प्रवासियों के मन प्राण, आग सी लगाती है प्रवासियों के मन प्राण, अब किसे अनजान।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details log on to www.ddindia.com।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली को। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स एवं 100.1 एफएम पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8:44:52 हुए हैं। कुछ क्षणों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल वेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट 1 महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
4: 1 साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
5: पिछले 2 दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले 2 दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले 2 दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में ये लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुँच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
6: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय

0: और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: भगवान सोम ने मंदिर बनाया, तब से जितने लोग आए, मोहम्मद गिजनी आए, अलाउद्दीन खिलजी आए, अलफ खान आए, मुजफ्फर गुर्जर सुल्तान आए, औरंगजेब आए, मोहम्मद बेगड़ा आया और मोहम्मद गजन भी आए, इतने आक्रमण के बाद भी क्यों खड़ा किया? ये कोई केवल मंदिर नहीं था, मंदिर तो बहुत से होते हैं और गुजरात में बहुत से मंदिरों पर को भी नष्ट किया था, लेकिन सोमनाथ ये भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का प्रतीक है। विनाश से निर्माण मैंने कहा, वो उस आधार पर वो खड़ा है और उसी आधार पर वहां से जो कुछ बना, कुछ संकल्प हुए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक शब्द दिया था, संकल्प कथा, संकल्प यात्रा, और कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति एक संकल्प ले, गुजरात विशेष हो जाएगा। और उन्हीं दिनों में मैंने कहा सरदार वल्लभ भाई, ये एक नींव का सबसे बड़ा ऐतिहासिक आरंभ था, ये बात सही है। और सरदार वल्लभ भाई ने जब संकल्प किया कि सोमनाथ तो होना चाहिए, फिर बात दिल्ली तक पहुंच, और सभी उन दिनों के जो लेखक हैं उन्होंने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू को ये ठीक नहीं लगा, उनका कहना था कि ये बिन सांप्रदायिक हमारा देश है, इसमें कोई दैवी मंदिर को इस प्रकार पुनर्निर्माण करना सरकार के द्वारा ये ठीक नहीं है
1: जी।
0: फिर वे लोग गांधी जी के पास गए, ये घटना है, और गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला, उन्होंने कहा कि ठीक है सरकार मदद न दे लेकिन लोगों के द्वारा फंडिंग करके इनको खड़ा किया जाएगा। ये बात हुई, बाद में तो गांधी जी भी नहीं रहे, सरदार भी नहीं रहे, और जब प्रतिष्ठित हो गया, मंदिर हो गया, तो राष्ट्रपति थे राजेंद्र बाबू को आमंत्रित किया गया, और ये स्पष्ट है उन दिनों के जो सब बयान है उसमें जवाहरलाल जी ने ना कहा, वो अपने ढंग से वो सोचते थे कि भाई ये सेक्युलर स्टेट है, लेकिन राष्ट्रपति जी ने कहा कि सेक्युलर होने के बावजूद मैं सभी जगह जाता हूँ, यदि मस्जिद का पुनरोद्धार होगा तो मैं वहां भी जाऊंगा, ये देश की संस्कृति है ऐसा। और आए और सोमनाथ का जीर्णोद्धार का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, उनके बाद बार बार ये हुआ, तो ये और फिर 47 के बाद ये यहाँ जो गुजरात राज्य 1960 में बना, तब से यहाँ की जो प्रजा थी, यहाँ के जो नेता थे, उन्होंने सोमनाथ ट्रस्ट बनाया। सोमनाथ ट्रस्ट पहले भी था, उसमें दिग्विजय सिंह जी ने बड़ा काम किया, जामनगर के महाराजा ने
1: जी।
0: और ये हमारे बहुत से ऐसे राजवी थे कि जो परम सांस्कृतिक प्रतिनिधि भी थे, संस्कृति के साथ जुड़े हुए थे, तो ये हुआ। और फिर सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा ये काम हुआ, इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल थे अध्यक्ष, अब नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस जो स्थान है, इस स्थान को एक ऐतिहासिक बनाने की यात्रा शुरू हुई है।
1: प्रधानमंत्री 11 मई को दोबारा जा रहे हैं वहां पर, आपने जिस तरह से हमें पूरा समझाया कि किस तरह ये प्रतीक है एकता का, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने लेख में भी किया है, लेकिन अगर आज के भारत को सोमनाथ की कहानी से अगर एक सीख लेनी हो पांड्या जी, तो वो क्या होगी? और इसको मैं जोड़ूंगी आज के जियोपॉलिटिकल संदर्भ से भी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये जिक्र किया है कि आज जब दुनिया में हर जगह जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूनिटी बिल्कुल नहीं है और जिस तरह से डिविजन्स हैं कई लेवल्स पर, उस संदर्भ में उन्होंने सोमनाथ का जिक्र किया है, तो अगर एक सीख हम आज के अपने देश के और दुनिया के संदर्भ में लें तो सोमनाथ से, वो क्या होगा?
0: मेरी दृष्टि से ये केवल जियोपॉलिटिकल है नहीं है, ये जियो कल्चरल भी, और सांस्कृतिक अस्मिता हिंदुस्तान की। हम बाकी विश्व की इसमें चिंता न करें, वो वहाँ शांति होगी या नहीं होगा, वहाँ युद्ध होगा नहीं होगा, वो तो अपने ढंग से वो सोचेंगे तब होगा, लेकिन भारत वर्ष में इन दिनों में युवा शक्ति को एक राष्ट्र जागरयाम वयम, राष्ट्र में हम सभी जगह जागते रहे, हम जहाँ भी हो जैसे भी हो, लेकिन जागृति बहुत बड़ी आवश्यक अनिवार्य है। और इसी इतिहास बोध से लेकर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ऐसे दो स्थान का निर्माण हुआ है, एक सोमनाथ का है और दूसरा केवड़िया कॉलोनी नर्मदा के किनारे सरदार पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, एकता की प्रतिमा, ये दोनों ऐतिहासिक है। आज तो वहां देश देशावर से लोग जाते हैं, तो ये इनकी इतिहास बोध की दृष्टि से ये हो रहा है। और आपने एक सवाल विदुषी को पूछा था कि युवा वर्ग इसमें कैसे जुड़ेगा, मेरी दृष्टि से और मेरे अनुभव से, मैं अध्यापक भी रहा हूं, मैं बोलता भी हूं,
1: रीसेंट टाइम्स as you like rightly mentioned, given the prime minister's outreach as well as the kind of efforts that have been undertaken in recent

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ एवं 100.1 FM पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: सबसे पहले लीजिए सुनिए फिल्म दिलवाले से कुमार सानू को।

फिल्म दिलवाले से अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू को। अगला गीत है फिल्म साजन से।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित अजय चक्रवर्ती से ठुमरी।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित अजय कुमार चतुर्वेदी से ठुमरी। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा।